0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर. फजान 97.1 FM. आई लव इट.
2: इट्स कमर्शियल टाइम.
3: ओखाना गाय की खुशबू, गोश्त की जायका और पिशावर का मेहमान नवाजी.
4: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
3: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटी गम में आ गया ना यारा.
5: जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
6: जहाँ लजीज चनमारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी.
5: दमदार खुशबूदार लैम काबली पुलाव दिल जीत लेगा.
6: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
5: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का.
6: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है.
3: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी.
6: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें.
5: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816, एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड, लेंटन नॉटिंगम, NG72ET.
6: पिशावरी डेरा.
7: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
6: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
8: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया. अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए.
6: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
8: मुगल बिल्डर्स?
6: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स. चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं.
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स.
6: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं.
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम. तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट.
6: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें.
9: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट.
10: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक.
11: फजा 97.1 FM.
6: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन.
12: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
8: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: This is a public service announcement.
8: The station
9: that plays
10: foot tapping music.
11: Hazar 97.1 FM.
3: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention!
3: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: लासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: to be.
1: This is a public service announcement.
2: Everybody. The station.
3: That plays
4: foot tapping music.
5: Huzzah 97.1 FM.
6: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड
7: इट्स कमर्शियल टाइम।
8: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
9: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
10: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
9: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
10: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
9: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
10: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
9: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
8: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
9: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
11: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
12: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
13: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
12: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
13: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
12: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
13: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
14: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
12: Park Foods, जो नाम है मायार का।
15: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioche straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
16: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
15: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
16: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
15: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
17: You are listening 97.1 FM.
18: मंगला जो भी मंगना मिल जूगा
19: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baseford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और जर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
3: पिशावरी डेरा।
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
3: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन।
9: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station. That plays
2: foot tapping music.
3: Hazar 97.1 FM.
4: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 87.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: This is a public service announcement.
8: The station
9: that plays
10: foot tapping music.
11: Huzzah 97.1 FM.
3: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: getting you where you need to be, safely and on time.
1: हेलो सुमान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा।
0: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.

जी तो कैसा गुजरा है दिन? आप लोगों के साथ मैं ही हूँ और अब मेरे साथ आप हैं, लेकिन इस चीज़ का एहसास मुझे कैसे हो? इस चीज़ का एहसास ऐसे होगा क्या आप डायल करेंगे मिस्टर गला व्हाट्सएप नंबर विच इज 01157100971। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आप हमें कैसे सुन सकते हैं आपको बताता चलूँ। आप एड्रेस बार में आप लिखेंगे radiofaza.co.uk, उसके पीछे जस्ट लाइव एंटर कीजिए और फिर आप एंटर हो जाएंगे इसी गुड मॉर्निंग की खूबसूरत सी नशिस्त में। और जनाब इसके अलावा आपको बताते चलेंगे एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे जनाब प्यारे से गूगल प्ले पे, प्ले स्टोर पे, वहां जाके आप टाइप करेंगे रेडियो 97.1 एफएम ऑफिशियल और फिर एक गोल्डन कलर के बैकग्राउंड के साथ नहीं बल्कि गोल्डन कलर की लिखाई में पर्पल बैकग्राउंड के साथ रेडियो फजा लिखा आपके सामने आएगा। उसको डाउनलोड करेंगे, ऐड करेंगे, उसके बाद जब आप प्ले करेंगे तो यही आवाज ठहरेगी आपकी स्मार्ट की नजर। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम कहते हुए

So here we go. Let's discuss today's weather reports. Now, aaj Nottingham Shire temperature 24 degree Celsius maximum and 14 degree Celsius minimum record kiya gaya. Is waqt fiza mein humidity ka level 0% hai janab, aur aapko ye batate chale ki sham 4 baje tak halke se badal aapke saath rahenge. 23% tak humidity level aapka increase kiya ho jayega, lekin raat tak aapke paas sunshine kafi tez rahegi. Temperature kafi thoda sa rahega fukdan, lekin aapko ye bataye ki barish halki halki hogi मिड नाइट के बाद. और आज रात के हवाले से क्या प्लान है वो मैं आपको बताता चलूं. प्लान किसका? मेरा नहीं, मौसम का. मौसम ये कहता है कि नाउ टुनाइट विल बी ड्राई विद क्लियर स्पेल्स ऑफ मच ऑफ द नाइट टुवर्ड्स डॉन. अ बैंड ऑफ क्लाउड एंड हैवी शावरी रेन विल अप्रोच फ्रॉम द साउथ लाइट टू जेंटल विंड्स. ओवरऑल यू कैन से अ मॉडरेट एंड चिल्ड वेदर विल बी अहेड. कल की हल्की सी प्रेडिक्शन आपको देता जरूर ताकि आप कुछ प्लान कर लें. कल की जनाब प्लानिंग कुछ ऐसी है कि हल्की सी शावर है, कुछ ना कुछ बादल कहीं ना कहीं गरजेंगे, लेकिन डिटेल रिपोर्ट आप कल की गुड मॉर्निंग नॉटिंगम में मुलाहिजा फरमाएंगे.

0: जी तो प्यारे लिसनर से आपको ये बताते चलें कि कोट ऑफ द डे आज की कोट क्या है जनाब। कोट ऑफ द डे का जो सेगमेंट है, सेगमेंट सबसे पहले आज की कोट है ना, टुकरा दो अगर दिल अगर दे कोई जिल्लत से समुंदर, इज्जत से जो मिल जाए तो कतरा भी बहुत है। बिल्कुल जनाब, इस पे अपनी विशेष टिप्पणी अपनी राय मेरे साथ शेयर करें। आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के हवाले से, यह आपने मुझे बताना है कि ओवरऑल मैं आपको ये बता चलूं। मैंने तो एक शेर के अंदाज में इसको पढ़ा है, लेकिन ये बता दूं कि कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई आपको ना नवाज दे, आपको चाको चौबन से नवाज दे, आपको बहुत ज़्यादा शोहरत दे दे, आपको बहुत ज़्यादा पैसा दे दे, आपको अनगिनत ऐसी चीज़ें दे दे जो दुनियावी चीज़ें आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन अगर उसमें हित तक आवेज लहजा मौजूद है या आपकी थोड़ी सी बिना उसमें डिसरिस्पेक्ट है, तो फिर उस समुंदर को आपने ठुकराना है। लेकिन इज्जत से फकीर के दर से अगर एक कतरा भी आपको मिल जाए, यानी इज्जत की दो वक्त की रोटी आपको मिल जाए, हमारे इस नॉर्डिक में स्पेशली इस देश के प्रदेश में या प्रदेश के देश में या कहीं भी, हम जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, जो जहां से मूव हो के आए, कोई पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल ओवरऑल, या आप कह लें कि केरला, या कोई भी ऐसी जो विजिट वाली स्पेस है जहाँ से हम लोग आए हैं और यहाँ आके सेटल हुए, सिविलाइज्ड मुआशरे में हमने अपना कदम रखा है और इस सिविलाइज्ड नेशन में हमने अपने आप को थोड़ा सा मनवाया है, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को अपना के, और बहुत ही बेहतरीन से ये रूल्स और रेगुलेशन, ये वो चीज़ें हैं जो चीज़ें अक्सर हमारी ज़िंदगी में बहुत कम होती हैं, हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी में बहुत कम होती हैं, लेकिन यहाँ आके हमें उन चीज़ों का पालन करना पड़ता है, उन चीज़ों को ले के साथ चलना पड़ता है। कोई विचार ऐसे होते हैं जो हमारे विचारों के साथ मैच नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग हमेशा आपके सामने रहते हैं, आपको याद रखते हैं, वो उनके विचार होते हैं जो आपको मजबूर करते हैं उन तक पहुँचाने में। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो आपको बेतहाशा नवाज देते हैं। आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं अपनी जॉब के हवाले से, दो दो तीन तीन शिफ्ट्स में हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, हमने एचएमआरसी टैक्सेस पे करने हैं, होम ऑफिस के कंप्लायंस अल्ला काफी सारी चीजें जो यहाँ के लोगों की नेशंस को समझने के लिए परखने के लिए बेहद जरूरी हैं। जब ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद होती हैं तो हमारे पास कहीं ना कहीं फुकदान रहता है उन चीज़ों का, जो चीज़ें हमने अपने साउथ एशियन कम्युनिटीज में से, हमने अपने घरों से, अपने होमलैंड से, अपने कल्चर से, अपने हेरिटेज से जो अवेल की हैं, जो गेट की हैं, या जिनको हमने अपने अंदर बसा लिया है, उन चीज़ों को कहीं ना कहीं हमें अगर थोड़ी बहुत मेहनत के साथ या किसी ना किसी हल्की सी रोनुमाई के साथ या कम अज़ कम थोड़ी सी रोशनाई के साथ कुछ लोग हमें अता करते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं ऊपर वाले के फजल से, भगवान की कृपा से और बाबे जी की रहम से, तो फिर तो ये एहसास हमें रहता है इस चीज़ का कि अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमने जो इज्जत कमाई है वो ऊपर वाले ने दी है, और जो हम आगे किसी बंदे को बेतहाशा प्यार दे रहे हैं, दौलत दे रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जिल्लत की बू मौजूद रहती है, हित तक आमेज लहजे मौजूद रहते हैं, कुछ ऐसी करख्तगी मौजूद रहती है जो करख्तगी हमेशा इंसान को उस पस्ती की तरफ लेके जाती है जिस पस्ती का उसको अंदाज़ा भी नहीं होता। तो अगर आपको ऐसी दौलत यहाँ पर कहीं मिल रही है, यह आपको कि ऐसी इज्जत, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि आप उसको जोड़ दें, लेकिन अपनी जो इज्जत नफ्स है आपकी, अपनी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, रेजिस्टेंस पावर है, कुव्वत मुदाफियत है, ये वो चीज़ें हैं जिसको आपने हमेशा अडॉप्ट करना है अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए, अपने बच्चों के लिए और उस सिविलाइज्ड माशरे के लिए, उस कम्युनिटी के लिए जिस कम्युनिटी का आज हम हिस्सा हैं। तो सामीन, ये हमारी गपशप है, ये है आज की विशेष और ये है आज की टिप्पणी। आपकी विशेष और टिप्पणी इस बारे में क्या कहती है लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिए 01157100971 पे। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे प्रोग्राम के कुछ सेगमेंट होते हैं, सेगमेंट में जनाब नेक्स्ट सेगमेंट मेरे पास होगा पर्सनैलिटी ऑफ द डे, उसके बाद लास्ट सेगमेंट होगा फजा आइडियाज का। आज का है क्या होगा, ये है आज की सक्सेसफुल कोट ऑफ द डे। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अपनी राय मुझे बताएं 01157100971 पे मैसेज करके ना, उसके बाद आप एहसास दिला सकते हैं कहां से आप बात करें, क्या मैसेज है, अपने पोस्टल कोड के साथ, अपने नेम के साथ, डेफिनेटली मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं रिप्लाई करूंगा, आपकी समस्याओं को हल करने की कोशिश तो नहीं कर सकता, वो ऊपर वाला ही करेगा, लेकिन ये अंदाज़ा रहेगा, ये कोशिश रहेगी कि जहां तक हो सके अपनी जनाब जो मुखलिसाना राय है वो आप तक पहुंचाई जाए, और राय के साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेरे ख्यालात आपके बारे में कैसे हैं, आपके ख्यालात मेरे बारे में कैसे हैं, ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं, ये आपके लिए ज़रूरी है। बिल्कुल जनाब, अगर ड्राइव करते हुए आप मुझे सुन रहे हैं तो रेडियो 97.1 FM आपने ट्यून अप किया है फजा पे फजा जनाब आप टाइप करेंगे अगर आप डैब यूज कर रहे हैं तो डैब पे आप फजा के नाम से हमें सर्च कर सकते हैं और सुन सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि ऑलवेज फास्टन योर सीट बेल्ट एंड डू नॉट यूज योर मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग। लेकिन अगर कहीं साइड पेडेस्ट्रियन पे कहीं जबरदस्त स्टारबक्स या कोस्टा की कोई आपको ब्रांड नजर आ जाए तो फिर रुकिएगा जरूर, वहां से दो कप कॉफी लीजिएगा। अगर मेरे लिए ऑर्डर करनी है तो आप डबल एस्प्रेसो डबल शॉट के साथ, ताकि आंखें थोड़ी सी खुल जाएं और उसके बाद गुड मॉर्निंग का जो सफर मजीद खूबसूरत बन जाए। साथ बैठ के मेरे पीजिएगा खूबसूरत सी कॉफी और प्लान कीजिए अपने दिन को। अगर आप अभी तक अपनी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचे और पहुंचना चाह रहे हैं, या कोई लोग शिफ्ट से वापस आ रहे हैं या जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, आपसे गुजारिश है कि आप भी गुड मॉर्निंग को ट्यून कीजिए। इसके अलावा डैब पे आप फिजा के नाम से सर्च करेंगे और ऑलरेडी एप्लीकेशन पे मैं आपको बता चुका हूँ, यानी मोबाइल पे अगर आप सुनना चाहते हैं तो फिर आप सुन सकते हैं। 01157100971 पे मैसेज कीजिए और उसके साथ रेडियो 97.1 FM ऑफिशियल टाइप कीजिए अपने एड्रेस बार में, या आपको एक ऑप्शन गूगल पे भी मिल जाएगी। गूगल पे जनाब जब आप फजा लिखेंगे तो जनाब आपका जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो आपको ये बता देगा कि आपने रेडियो 97.1 FM कैसे ट्यून करना है। स्टे ट्यून विद फजा 97.1 FM। कीप योरसेल्फ वेरी एनर्जेटिक फॉर द डे एंड योर होस्ट इज राइट हियर। With some more tracks and with more energetic waves of life, अपने कोड ऑफ द डे इस पे आज भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेगमेंट में मेरे साथ कौन होंगे पर्सनैलिटी ऑफ द डे आपने जज करके मुझे बताना है। अगर आप नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा कि मेरे साथ कौन होगा। इसके लिए आप रहेंगे मेरे साथ क्योंकि कुछ ही समय में हमारे दरमियान हायल होने जा रही कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के उस पार जब मेरी दोबारा आपसे मुलाकात होगी तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि पर्सनैलिटी ऑफ द डे, पर्सनैलिटी ऑफ द डे का सेगमेंट जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होता है सामीन, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो अपनी जिंदगी में ये सोचते रहते हैं ना कि यार बड़ी मेहनत कर चुका हूं, बहुत ज्यादा काविशें कर चुका हूं, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा जनाब मैं रिश्ते निभा चुका हूं और उसके बाद मुझे कोई सिला नहीं मिला, मुझे कोई जनाब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला आगे से, तो उसके लिए हमारे पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक लेजेंड होते हैं जो पर्सनैलिटी होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो 61 ईयर्स की लाइफ में जाके कंप्लीट करते हैं अपनी सक्सेस स्टोरी को। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बचपन से सोने का चमचा लेके पैदा होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ये तमाम आसाइशें नहीं मिली होती, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जाते हैं, आप उन पर नजर रखिए। स्टे ट्यून्ड विद फजा 97.1 FM, एंजॉय द कमर्शियल ब्रेक एंड योर होस्ट नास्टर।
1: जरा ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ।
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
4: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ए क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
4: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
3: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड न्यू बेसफोर्ड नॉटिंगम।
4: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
3: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

Wow, wow, wow. Welcome back. What a motivational success story of the great Priyanka Chopra. अच्छा, एवरीबडी वॉज थिंकिंग कि प्रियंका चोपड़ा शायद बचपन से ही ना कोई ज़बरदस्त तरीके से कोई बड़े शहाना अंदाज में पैदा हुई हैं, लेकिन आई एम शॉक टुडे लिटरली कि क्या ज़बरदस्ती पर्सनैलिटी है और क्या ज़बरदस्ती मूव इन्होंने ली है। मैं तो सोच रहा था कि शी इज़ अ प्रोफेशनल इंजीनियर, लेकिन आज हमें भी ये पता चला आपके तवस्त से कि ये इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन इनके माँ बाप ने और इनके बहन भाई ने, यानी फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनका वर्ल्ड जो ब्यूटी कॉन्टेंट हो रहा था, जो बेसिकली जो मार का आरआई होने जा रही थी या जो प्रोग्राम हो रहा था, उस जो कॉन्सर्ट था उसमें इनके जो वालदैन हैं यानी इनके जो भाई हैं उनकी मदर ने वो पिक्चर दे दी और उसके बाद इनकी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ एक्ट्रेस का, और उसके बाद बॉलीवुड की वो तमाम ज़बरदस्त हिट फिल्में जो इन्होंने जनाब कामयाब की, उसके बाद अब हॉलीवुड में भी अपना लोहा मनवा चुकी हैं जनाब। एक बड़ी ज़बरदस्त सी इनक्रेडिबल सी बात थी अगर आपने गौर से सुनी इनकी पर्सनैलिटी में, वो ये थी कि शी hate to fail, यानी नफरत करती हैं फेलियर से, नाकामयाबी से। ये जो पैशन है ना सामीन, ये अपने अंदर पैदा करना कि आज हमने क्या करना है। आज के दिन आपने सिर्फ ये सोचना है कि जितने भी टास्क आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं या जहाँ पे भी कोई मेहनत कर रहा है, कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, मैनेजमेंट की, स्किल्स की, मार्केटिंग की, सेल्स की, कैरियर की, टेक वे पे, कैब की, कहीं भी कोई भी जॉब कर रहा है ना बंदा, उस बंदे की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज आपने ये देखनी है या उस बंदे ने ये इवेलुएट करना है, अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी है। वो अकाउंटेबिलिटी क्या है? वो ये है कि आपने आज के दिन फेल नहीं होना। कोई भी आपका टास्क है, कोई भी आपकी ऐसी चीज़ है, उसको नोट कर लीजिए अभी से। अगर आप ड्राइव करते हुए मुझे सुन रहे हैं तो साइड पर पार्क कीजिए, सीट बेल्ट को हल्का सा लूज कीजिए, अपने मोबाइल का नोट पैड निकालिए, उसमें नोट कीजिए कि टुडे You're not gonna be fail. आपने आज के दिन फेल नहीं होना। ये हमारी आज की मोटिवेशन रहनी चाहिए, आज की एनर्जी रहनी चाहिए, और इस एनर्जी के साथ हम अपना दिन आगे भी लेके चलेंगे। इसको थोड़ा सा मजीद आप ये कह लें कि इम्पोर्टेंट लेवल पे डिस्कस करेंगे। मैसेजेस जिन लोगों के आ रहे हैं, थैंक्स अलॉट, 115-710-9711। अगर आप लोगों की बातों में और आप लोगों की चाहतों में मुझे टाइम मिला तो डेफिनेटली मैं आपके मैसेजेस भी पढ़ूंगा और आपको रिप्लाई भी करता हूं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि मैसेज जब करें तो मुझे ये बता दें कि आप कहां से, क्यों, किसके लिए, कैसे बात कर रहे हैं, ताकि मैं शामिल कर सकूं आपके मैसेजेस अपने प्रोग्राम में, अपने प्रोग्राम के साथ आप लोगों की जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग है उसमें ये बता सकूं कि हमने आज के दिन आपको क्या दिया, आपने आज के दिन हमें उसका रिवर्ड क्या दिया, रिप्लाई क्या किया, और किस तरह आप मुझे अपने साथ लेके चले। एक बार फिर से मैं आपको जनाब आज की मोटिवेशन सक्सेस कोट का याद करवाता चलूं, ओवरऑल उसका मफहूम बता दूं कि अगर आपको कहीं से बहुत ज़्यादा पैसा, दुनिया की रोशनाई और रहनुमाई भी मिल रही है, ठीक है, लीडरशिप भी मिल रही है, लेकिन अगर उसमें आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो फिर उसको आप टुकरा दें। अगर आपको कहीं से एक बूंद पानी का कतरा भी मिलता है लेकिन उसमें रिस्पेक्ट बेशुमार होती है तो उसको अपना लीजिए। यही वो लोग हैं, यही वो पर्सनैलिटीज़ हैं, यही वो चेहरे हैं जो ज़िंदगी में हमेशा आपके काम आएंगे और आपको अपने साथ लेके चलेंगे। आपका फ्यूचर बनेगा और आपके फ्यूचर के बेस पे आपकी जो आने वाली नस्लें हैं, जो आपके बच्चे हैं, जो आपके किड्स हैं, वो परवान चढ़ेंगे। और स्पेशली हमारे इस देश के प्रदेश में, इस प्रदेश के देश में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी रेजिस्टेंस पावर, आपकी कुव्वत मुदाफियत कैसे बढ़ती है, वो ऐसे ही बढ़ती है जैसा कि प्रियंका चोपड़ा ने अपनी लाइफ में, अपनी स्टोरी में ये बताया कि मैंने ज़िंदगी में हमेशा बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखे, लेकिन सक्सेस उन चैलेंजेस के बाद थी। जैसा कि सामीन अक्सर आप जानते हैं कि ज़िंदगी में तीन किस्म के लोग होते हैं, बेसिकली वॉरियर, चैलेंजर एंड सर्वाइवर। अब अगर आपको क्लासिफाई करना पड़े कि इन तीनों में से कौन है, अक्सर मैं अपने प्रोग्राम में ये बात डिस्कस करता हूँ, तो मोस्टली लोग जाएंगे चैलेंजर्स लोगों की तरफ, जो लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मार्टिन लूथर एक ऐसे ज़बरदस्त से जनाब लखारी हैं, वो ये कहते हैं कि मेरे नज़दीक जो वॉरियर होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, जो जंगे लड़ते हैं, यानी ज़िंदगी की जंगे, मुश्किलात की जंगे जनाब, चैलेंजेस की जंगे, लोगों के रवैयों की जंगे, लोगों के गुस्से की, उनके अहबाब की, उनके साथ रहने वाले अर्ज गर्ज, जितने भी माहौल है, जो भी इन्वायरमेंट है इर्द गिर्द का, जितना भी इन्वायरमेंट है, उन सब की एक ख़ास जंग होती है, उनके लहजे में एक ख़ास करख्तगी होती है, उनके लहजे में एक ख़ास नफ़रत होती है कुछ लोगों में, जिनको वो बर्दाश्त करते हैं, वो जंग लड़ के उन लोगों की नफ़रत को मोहब्बत में तब्दील करते हैं, और मोहब्बत में तब्दील करने के बाद उनको ये एहसास दिलाते हैं कि जैसा तुम मेरे लिए सोचते थे वो तुम्हारा दौर था, अब ये मेरा दौर है, मैं तुम्हारे लिए बेहतर ही सोचूंगा, अनगिनत सोचूंगा, बहुत मेहनत से सोचूंगा,
पूछूंगा और आपको ये भी समझाऊंगा कि अगर आपने उस वक्त सोचा था तो फिर सोचना कैसे चाहिए था आपको। तो ये लोग होते हैं जो बेसिकली वॉरियर होते हैं, जंग को जीत कर एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं, हर लम्हे एक नई जिंदगी में रहते हैं, हर लम्हे नई जिंदगी को जीना सीखते हैं, हर लम्हे उन लोगों के साथ रहते हैं जो कामयाब और सक्सेसफुल लोग होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबिलिटी के साथ आपके माहौल पे असर अंदाज होता है, आपका इन्वायरमेंट कैसा होता है। ये इन्वायरमेंट बेसिकली मुख्तस होता है आप लोगों के इर्द गिर्द के लोगों के साथ, उनके रवैयों के साथ, उनके अहबाब के साथ, उनके एहसाल के साथ, उनके अहवाल के साथ, इन तमाम चीज़ों के साथ ये चीज़ रिलेट करती है, मिलती जुलती रहती है। और जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो फिर एक खूबसूरत मुआशरा बनता है, एक ऐसी कम्यूनिटी बनती है जिस कम्यूनिटी का ख्वाब आज हम देखते हैं। बिल्कुल प्रियंका चोपड़ा ने भी कुछ ऐसा ही किया, उन लोगों के साथ मिली, उन लोगों के साथ रही जो हमेशा कामयाबी का सफ़र सुनते थे, कामयाबी का सफ़र देखते थे, या ये सोचते थे कि मेरे पास जो मजीद चीज़ें हैं, मेरे पास जो मजीद आसाइशें हैं, उनको मैं एक्सटेंड कैसे कर सकती हूँ या कैसे कर सकता हूँ। तो फिर फेलियर आपके पास नहीं आता, कामयाबी ही आपके पास रहती। इसके अलावा आपके इर्द गिर्द भी ऐसी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ मौजूद होंगी, डेफिनेटली ये मीडिया की जीनत नहीं बनी होगी। कुछ ऐसे बिजनेस मैन हैं, कुछ ऐसे सर्कल में लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस लेवल पे पहुंचते हैं कि उनका टाइम भी एक टाइम फ्रेम में आपको दिया जाता है, उनके लिए एक मिनट भी एक मिनट का मतलब एक मिनट ही होता है, ताकि वो उन जिंदगी के 60 सेकंड्स को काउंट कर सकें, अकाउंटेबिलिटी कर सकें और ये एनवायरनमेंट में उतार सकें चीज़ के एक मिनट उन्होंने अगर आपको दिया तो वो एक मिनट कभी ज़ाया नहीं हुआ। खूबसूरत सी डिस्कशन हमारी साथ साथ चलती रहेगी, तंजो मजा भी रहेगा, लेकिन आप लोगों को बोर भी तो नहीं होने ना, आपकी एनर्जी स्वस्थ रहे और आप मेरे साथ जुड़े रहें। खूबसूरत से ट्रैक्स भी मेरे पास मौजूद हैं, एंजॉय कीजिए कुछ खूबसूरत से ट्रैक्स, लेकिन मेरा BGM चेंज हो चुका होगा, डेफिनेटली ये ट्रैक्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, क्योंकि जनाब लव सॉन्ग्स मैशअप है 2026 का जुक बॉक्स का। स्टे ट्यून्ड फॉर द 97.1।

बिल्कुल ना, मर जाना उन लोगों के लिए बहुत अच्छी सी बात है जिनके चाहने वाले नहीं मिलते। चाहने की खूबसूरत सी आवाज है, खूबसूरत से ट्रैक्स हैं। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम का ये सफर नासिर खान आपके साथ ऑल द वे फ्रॉम नॉटिंघम ऑन रेडियो फजा 97.9।

0: और जिनके सैया आपसे दूर हैं या उनसे दूर हैं, उनके लिए भी ये खूबसूरत से ट्रैक्स हैं। इसी को ऐसा बीजीएम यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो मजा है उसमें खलल ना आए और आप एंजॉय कर सकें गुड मॉर्निंग के खूबसूरत से सफर को और अपनी सुबह को मजीद स्वस्थ और खूबसूरत बना सकें। जी भी हमारे दरमियान हाल होने जा रही खूबसूरत सी कमर्शियल ब्रेक के उस पार रहेगी आपसे फिर से मुलाकात। लास्ट सेगमेंट होगा फजा आइडियाज का, सुनिएगा जरूर। स्टे ट्यून्ड विद फजा 97.1 एफएम एंड योर होस्ट नासिर खान विल बी राइट बैक आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: ओखाना कढ़ाई की खुशबू, गोश्त की जायका और पेशावर का मेहमान नवाजी।
3: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
2: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और चर्सी कढ़ाई की खुशबू आपको खींच लाएगी।
2: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
2: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
2: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 97 2 ET
3: Peshawri Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite

0: Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
1: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
2: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
1: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
2: मुगल बिल्डर्स?
1: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
1: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
2: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
1: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

Welcome back, the listeners of Radio Faza 97.1 FM. And your host Nazir Khan is right here. The good morning, Nottingham ka ye khoobsurat sa safar hai. Aur kamaal yaar. What a session. Yaar kamaal ki baat hai. Kya zabardast idea diya yaar. Kamaal faza idea unhone diya. Hamari jo production team hai badi mehnat karti hai. Aur aaj jinab hansne ka sabse bada jo benefit hai wo aapne is idea mein suna. मुझे तो बहुत मजा आया और यकीन करें दिल कर के मैं अकेला बैठ के हंसता रहूं. तो जनाब कितने बेनिफिट हैं हंसने के. देखे आपने आपकी एक्सरसाइजेस भी होती हैं, आपकी जो रिप्स हैं बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेसफुल रहती हैं आपके डेली वर्क के हिसाब से. आप डेफिनेटली इमोशंस भी होते हैं, आप स्ट्रेसफुल भी होते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा डिफाइन भी करते हैं. कुछ लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं जो आपको तंगियां देते हैं, परेशानियां देते हैं. कुछ लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं जो मुसलसल आपको खुशी देते हैं, हंसने की तौफीक देते हैं. तौफीक तो ऊपर वाला देता है, लेकिन कुछ लोग वसीला बनते हैं तवसल से. उस वसीले से आप लोग भी हंसते हैं और इसी तरह खूबसूरत से कुछ चेहरे हमारे सामने आते हैं. आपके सामने जो चेहरा है, आप मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आ जाती है. कुछ ऐसे चेहरे होते हैं, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसे प्यारे लोग होते हैं. और जनाब यही वो प्यारे लोग, यही वो खूबसूरत पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनको लेके आप ज़िंदगी में मुसलसल हंसना चाहते हैं. और मैं भी डेफिनेटली हंसना चाहता हूँ. आप लोग मेरे साथ रहेंगे इस चीज़ का मुझे एहसास है. ले जी, काफ़ी सारी हमारी गपशप हो चुकी, काफ़ी सारी हमारी मोटिवेशन हुई, गपशप हुई, बात हुई. लेकिन इस पूरे एक डेढ़ घंटे के प्रोग्राम में मैंने अभी तक कुछ खास ट्रैक्स नहीं चलाए. सिर्फ लास्ट चंक में मेरे पास 2 से 3 मिनट थे आपको कुछ ट्रैक्स सुनाने के लिए. तो जनाब आप परेशान मत हो, कुछ ज़बरदस्त से ट्रैक्स मेरे पास मौजूद हैं जो सोचा आपके लिए मैं प्ले करूंगा, और वो प्ले मैंने कर दी हैं. आप इंजॉय कीजिए इन खूबसूरत से ट्रैक्स को. स्टे ट्यून विद फज़ा 97.1 FM. एंजॉय कीजिए कुछ खूबसूरत से ट्रैक्स डिफरेंट लैंग्वेजेस में.

जी तो वेलकम बैक खूबसूरत से प्यार से लिसनर ऑफ रेडियो फजा 97.1 एफएम, आपका मेजबान आसिर खान आपके साथ मौजूद है। आप ट्रैक्स एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ एंजॉय कर रहा हूं। तो लेकिन आपको कुछ चीजें बतानी है, कुछ समझानी है, वो कुछ ऐसी हैं कि जनाब वक्त आ गया है बिछड़ने का, जुदाई का वक्त है। मलाल मत कीजिएगा, कल फिर मिलेंगे नए अंदाज के साथ, नए ट्रैक्स के साथ, नए सेगमेंट के साथ, नए मौजू के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ आप लोग मेरे साथ रहेंगे। इस चीज़ का एहसास है, 97.1 एफएम ट्यून करने का बेहद शुक्रिया। आज के दिन को मजीद मोटिवेट रखिए, एनर्जेटिक रखिए, अपने आप को, अपने हल्का अहबाब को मुख्तस कीजिए उन लोगों के साथ। बिल्कुल जनाब, थोड़ा सा चुनाव का एक तरीका आपको करना पड़ेगा ताकि आप बेस्ट तरीके से, खूबसूरत तरीके से जिंदगी को गुजार सकें। आज के दिन मोटिवेट रहें, अपनी पर्सनैलिटीज को बचा के रखिए ताकि ड्यूरिंग वीक आप बहुत ही कामयाब तरीके से अपने आप को लेके चले। लेजी स्टेट यूनिट फॉर 97.1 एफएम। हमारी बाकी ट्रांसमिशंस के बारे में जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट radiofaza.co.uk। अलावा जी हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक एटसेट्रा, जनाब उन पर आप जाएं, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, एहसास दिलाइए अपने होने का।

0: Starter just overwhelms you, and then you're just going to have to ride it out. It's with tickling, with...
1: असल से उस वसीले से आप लोग भी हंसते हैं और इसी तरह खूबसूरत से कुछ चेहरे हमारे सामने आते हैं आपके सामने जो चेहरे खूबसूरत से प्यार से लिसनर ऑफ रेडियो फजा 97
2: ठहरिए जरा ये कमर्शियल तो सुन ले
3: जी हाँ मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर चाहे ब्रेकफास्ट हो ब्रंच लंच डिनर या टेक अवे मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669 मराया रेस्टोरेंट जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा
4: हेलो उस्मान कहाँ हो यार
5: कहाँ होना है ट्रैफिक में फंसा हूँ
4: अरे इतनी टेंशन में क्यों जल्दी क्या है
5: यार घर की ग्रोसरी करनी है सब्जियाँ लेनी है फल लेने हैं गोश्त
4: अरे वेट वेट वेट वेट तो इतनी परेशानी क्या यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ हलाल गोश्त एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं और हाँ ये HMC सर्टिफाइड भी हैं
5: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ
4: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं चाहे लंच हो फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
6: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793
7: Ariana Supermarket 126132 Grassington Road NG8 3P Nottingham Monday to Saturday 8 AM to 8 PM Sunday 10 AM to 8 PM Ariana Supermarket freshness you can trust prices you'll love
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
9: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है जदीद तरीन थीम्स शानदार सेटअप संगीत मेहंदी वेडिंग रिसेप्शन होम एंड वेन्यू निकाह पार्टीशन सेंटर पीसेस वेलकम साइन एंगेजमेंट हाउस लाइटिंग वॉक अवे डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट वो भी आपके बजट में तो देर किस बात की अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद मज़ीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715

अभी तक तो आप सबने गेस कर लिया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। जी हाँ, म्यूज़िक। मैंने सुना है कि बहुत सारी थेरेपीज जो इंसान को फ्रेश करती हैं, एनर्जेटिक करती हैं, बट होती हैं बहुत ही एक्सपेंसिव। सो हम एक्सपेंसिव थेरेपीज की तरफ नहीं जाते, हम जाते हैं एक ऐसी थेरेपी की तरफ जो कि है बहुत ही सिंपल प्लस एक्सपेंसिव तो बिल्कुल भी नहीं है, तो और माइंड को भी कर देती है एकदम फ्रेश। सो आप समझ गए होंगे कि मैं म्यूज़िक की बात कर रही हूँ। आइए मिलकर सुनते हैं खूबसूरत सा एनर्जेटिक सा ट्रैक। सो ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात, एंड देन गपशप का सिलसिला जारी करते हैं।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से तमाम सुनती हुई समातों को खुश आमदीद। जे तो टीवी डायलॉग में आप सभी का स्वागत है और उन सभी लिसनर जिन्होंने अभी अभी हमें ट्यून किया है, सो ये वेलकम आप सभी के लिए। तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ट्रैक? सो बेसिकली ये खूबसूरत सा ट्रैक हमारी एक लिसनर की फरमाइश थी, यानी कि ये गाना उनका पसंदीदा गाना था। सो उन्होंने से कहा कि इस गाने को प्रोग्राम में शामिल किया जाए, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, वाई नॉट। आई होप आप सभी को भी ये गाना उतना ही अच्छा लगा होगा। वेल, थोड़ा सा डिफरेंट था, काइंड ऑफ कह लो सराइकी म्यूज़िक इस टाइप की वाइब थी, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ये गाना बहुत ही अच्छा था। और हर तरह का म्यूज़िक सुनना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा ऐसा म्यूज़िक सुने जो बहुत ही शोर वाला हो या जिसकी बीट बहुत हाई हो। म्यूज़िक इट्सेल्फ इट्स लाइक इट्स ऑल अबाउट लिरिक्स। अगर लिरिक्स अच्छे हैं तो डिपेंड नहीं करता कि बीट बहुत अप है या फिर बहुत डाउन। वेल लिसनर्स, आज अचानक से बैठे बैठे एक चीज़ मेरे माइंड में आई, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज हम इसको अपने लिसनर्स के साथ भी शेयर करें। सो जी, क्या आपने कभी अपनी डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसा सोचा कि आप डेली बेसिस पर रेडियो सुनते हैं, लेकिन आखिर ये रेडियो कहाँ से ईजाद हुआ, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ और किस सेंचुरी में लोगों को इसकी ज़रूरत महसूस हुई? चलिए, अगर अभी तक आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा या कोई भी ऐसी थॉट आप सभी के माइंड में नहीं आई, तो आइए आज मिलकर सोचते हैं। सो चलते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री की जानिब, यानी कि 19th सेंचुरी में जहां से इस शाहकार का स्टार्टअप हुआ था। सो बेसिकली एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने लैब में डिस्कवर किया कि हवा में कुछ ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सफ़र कर रही होती हैं जो नज़र तो नहीं आती, लेकिन उनकी लहरें आसमान में यानी कि आसपास इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूम रही होती हैं। सो जब उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया, सो द सेकेंड थाट डेट पॉप इन हिम माइंड, कि उनके माइंड में जो एक नेक्स्ट चीज़ आई कि अच्छा तो ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो होती हैं जो कि हवा में इर्द गिर्द सफ़र कर रही होती हैं, लेकिन हम इनको यूज़ कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि आखिर इनका इस्तेमाल क्या है। सो साथ ही फिर एंट्री होती है एक इटालियन नौजवान की जिनका नाम था मार्कोनी। सो मार्कोनी सिर्फ 20-21 साल के थे जब उन्होंने सोचा कि अगर ये लहरें हवा में तैर सकती हैं तो इनके ज़रिए मैसेज क्यों नहीं भेजा जा सकता। सो उन्होंने स्टार्ट किया ये एक्सपेरिमेंट। सो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किसी लैब में नहीं किया, ना ही किसी साइंस लेबॉरेटरी में, बल्कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया अपने ही घर की छत से। सो इस तरह करते करते जब ये शुरुआत हुई, तो फिर जाके 1985 में उन्होंने दुनिया में पहला एक वायरलेस सिग्नल थ्रू आउट द होल वर्ल्ड सेंड किया। सो अगर हम ये कहें कि ज़िंदगी में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि किसी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करके यानी कि हवा की लहरों से अपना पैगाम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया, तो गलत नहीं होगा। बेसिकली रुकिए ज़रा, ये जो हमारा फर्स्ट पैगाम था, इट्स नॉट लाइक कि जिस तरह से आज मैं बात कर रही हूँ प्रॉपरली और आप इसको आराम से ट्यून कर रहे हैं, इट्स लाइक जैसे कि कर लो कि कोई शोर की आवाज़ होगी या इधर इर्द गिर्द की सनसनाहट की आवाज़, कुछ इस तरह का साउंड था जो उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया। तहाँ से मोर्स कोड के ज़रिए से सिग्नल्स आगे पीछे जाते थे, इसे कहते हैं द वायरलेस थेरेपी। सो इस तरह से करते करते करते आखिरकार हमारा ये काम स्टार्ट हुआ कि जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करते करते एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुँचाना स्टार्ट किए। कुछ इसी तरह से हुई थी हमारे इस रेडियो की शुरुआत।
अब तो ये हो गई साइंस की थोड़ी सी बात कि किस तरह से साइंस ने इस चीज़ को डिस्कवर किया, लेकिन अब यहाँ ये बात करते हैं कि रेडियो बनते कैसे हैं और काम कैसे करते हैं। बहुत सिंपल सा है, इसके लिए हमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता, जस्ट फ्यू स्टेप्स होते हैं जिनको अगर प्रॉपरली फॉलो किया जाए तो हम एक बहुत अच्छा रेडियो इन्वेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये 3 स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। सो फर्स्ट इज माइक्रोफोन और ट्रांसमीटर। जब मैं माइक में बोलती हूँ या फिर कोई भी माइक में बोल रहा होता है तो आवाज़ इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल जाती है और ट्रांसमीटर इन सिग्नल्स को रेडियो वेव के तौर पर एक जगह से दूसरी जगह हवा के थ्रू पहुँचाते हैं। ये लहरें बेसिकली लाइट की स्पीड से हवा में हर तरफ आगे पीछे फैल जाती हैं। सो आपका रेडियो एंटीना इन लहरों को कैच करता है और रेडियो के अंदर मौजूद स्पीकर इन लहरों को दोबारा से उसे खूबसूरत सी आवाज में तब्दील कर देता है जिस आवाज में हम असल में बोल रहे होते हैं। सो देखा आप सभी ने कितना यूनिक अन डिफरेंट और अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से कि हम माइक में बोल रहे होते हैं लेकिन थ्रू आउट द होल वर्ल्ड हमें उसी वक्त ट्यून कर रहा होता है, सुन रहा होता है हमारी इन आवाज़ों को। सो अगर देखा जाए तो साइंस के जहाँ हम बहुत सारी इन्वेंशंस की बात करते हैं, करिश्मों की बात करते हैं, उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट आई थिंक सो रेडियो भी आता है, क्योंकि इस चीज़ को डिस्कवर करना कि किस तरह

लिसनर्स, ये था रेडियो का सिंपल सा, बेसिक सा, शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन. मैंने सोचा कि हम डेली बेसिस पर रेडियो आते हैं, गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम में से बहुत से ऐसे लोग मौजूद हों जिन्हें इस बारे में मालूम ही ना हो कि आखिर ये रेडियो स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसकी जर्नी शुरू कहाँ से हुई और ये किस तरह से वर्क करता है. आई होप सो लिसनर्स, आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा और आपकी मालूमात में भी इजाफा हुआ होगा. इस हवाले से अगर आपका कोई भी हो क्वेश्चन या कोई भी चीज़ हो जो आपको समझ ना आई हो, सो 0115710971 आप इस नंबर के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं. एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं आपकी तमाम कंफ्यूजन को दूर करूँ और आपको प्रॉपरली जवाब दूँ. सो द लिसनर्स, ये तो बात हो गई कि किस तरह से हमने रेडियो इन्वेंट किया, बट इसके बाद अगर हम लेट 19th सेंचुरी की बात करें, सो उस टाइम पर रेडियो बहुत ही ज़्यादा पीक पर हुआ करता था और आई थिंक सो कि हर घर में ही रेडियो के बहुत सारे शायकीन और फैंस एग्जिस्ट करते थे. अब तो है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली जा रही है तो आपके पास इंटरटेनमेंट के और भी बहुत सारे सोर्सेज मौजूद होते हैं, जिस पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स और इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन है. लेकिन अगर हम लेट 19th सेंचुरी की बात करें तो उस वक्त के तमाम तर इंटरटेनमेंट के सोर्सेज नहीं होते थे. सो सब लोग रेडियो को एज अ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट प्लस एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखते थे और रेडियो ही को समझा जाता था एक ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल. सो वेल लिसनर्स, ये तो हो गई के रेडियो की इंट्रोडक्शन. अब ज़रा वापस से आ जाते हैं अपने डीवा डायलॉग के सफ़र की जानेब. सो जी, इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का. जैसा कि है आप सभी लिसनर्स को मालूम कि कमर्शियल ब्रेक भी बहुत ज़रूरी होती है प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए. सो जी आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब. आप सभी से मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पर. तब तक के लिए आपने कहीं भी नहीं जाना, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहना है, बने रहना है और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहना है थ्रू SMS एंड थ्रू कॉल्स. So the listeners, let's take a short break and we will be right back after a very short break. So stay tuned with us.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से तमाम सुनती हुई समातों को खुश आमदी दीवा डायलॉग में, और मैं हूँ आप सभी की होस्ट द वन एंड ओनली आरजे ज़ैनब फातिमा। तो लिसनर्स, एक बार फिर से बताते चलती हूँ कि 01157100971 है मेरा और आपका रابطے का नंबर, यानी कि ये वो नंबर है जिसके थ्रू आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या किस तरह के टॉपिक्स पसंद हैं, प्रोग्राम में क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए, और साथ ही साथ अगर आप अपने किसी भी चाहने वाले को कोई भी प्यारा सा गाना डेडिकेट करना चाहते हैं सो उसके लिए भी आपको ये नंबर इस्तेमाल करना होगा और सिंपली टेक्स्ट करके मुझे बताना होगा। एंड आई मेक श्योर कि आपकी तमाम तर बताए हुए टॉपिक्स और तमाम तर बताए हुए ट्रैक्स शो में शामिल किए जाएं। सो द लिसनर्स, अभी हमारी एक बहुत ही प्यारी सी लिसनर ने हमें एक बहुत एनर्जेटिक सा ट्रैक रिकमेंड किया है। सो ये ट्रैक पर्सनली मुझे भी पसंद है क्योंकि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मैक्सटन हॉल। सो ये ट्रैक मैक्सटन हॉल में बहुत ही ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल किया गया था, डेट्स वाई ये गाना मुझे बहुत पसंद है। सो जी आइए मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक। ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर गुफ्तगु का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सो स्टे ट्यून विद अस।

सो बेसिकली आज का जो हमारा फर्स्ट कोट है वो मैं आप सभी से शेयर करती हूँ. सो अवर फर्स्ट कोट सेज, द माउंटेन डजंट केयर हाउ मेनी टाइम्स यू ट्रिप, इट ओनली केयर्स दैट यू कीप क्लाइंबिंग. सो बेसिकली हमारे इस कोट का मतलब कुछ यूं है कि पहाड़ को इस बात से कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार ठोकर खाकर गिरते हैं, उसे फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपने चढ़ना बंद नहीं किया. आई नो आप सभी को ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका मीनिंग इटसेल्फ बहुत ही ज़्यादा गहरा है, बहुत डीप है और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से काफ़ी हद तक रिलेट करता है. सो आइए ज़रा इसको थोड़ा सा खुल के एक्सप्लेन करते हैं. सो जी लिसनर्स, हमारी मंजिल, हमारे ख्वाब बहुत बड़े होते हैं हमेशा. रास्ते में ठोकर लगना, गलती होना या फेल होना बिल्कुल नॉर्मल है. सो ये जो कुछ लोग होते हैं ना कि जो समझते हैं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ अचीव कर ले या फिर हम द मिस्टर परफेक्ट बन जाएं, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप कोई भी काम करें, कोई भी आपका ख्वाब हो, ड्रीम हो और आप पहले ही अटेम्प्ट में उसे अचीव कर लें. यू हैव टू बी वर्क अलॉट, साथ ही साथ आपको ठोकरें भी लगती हैं, आप काफ़ी मरतबा फेल होते हैं, काफ़ी मरतबा चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी आप करना चाहते होते हैं. सो ज़िंदगी आपसे ये डिमांड नहीं करती कि आप कितनी बार हार चुके हैं, बल्कि ज़िंदगी बस ये देखती है कि क्या आपने बार बार गिरने के बाद दोबारा शुरू किया, क्या आपने अपनी वो मंजिल हासिल की. सो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने उस मकसद, उस मंजिल या फिर उस ख्वाब तक पहुँचें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप गिरते रहें, सीखते रहें और बस आगे बढ़ते चले जाएँ. सो दे लिसनर्स, ये था हमारा आज का फर्स्ट इंस्पिरेशनल प्लस मोटिवेशनल कोड. आई होप यू गेट द मीनिंग. साथ ही साथ आपको कैसा लगा और अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी सिचुएशन है तो मैं ये कह रही थी कि अगर साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी सिचुएशन है यहाँ जहाँ आपको काफ़ी मरतबा गिरने के बाद यूँ लगा हो कि बस अब ज़िंदगी रुक चुकी है और आपको गिव अप कर लेना चाहिए, अपने उस ख्वाब को, उस ड्रीम को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, सो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि देर वॉज़ अ टाइम इन माई लाइफ जब मैं कुछ अचीव करना चाहती थी और कॉन्स्टेंटली मेहनत करने के बावजूद मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सक रही थी. सो आई फील लाइक कि बस मुझे क्विट कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट फॉर मी. लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है. अगर मैं गिरूंगी नहीं, बार बार ठोकर नहीं खाऊंगी, तो क्या मैं उस मुकाम तक पहुंच सकती हूँ जो कि मेरा ख्वाब है. सो कभी भी फेलियर से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि फेलियर आपको मोटिवेट करता है, आपको बेहतर बनाता है और आपको आगे पहुँचाता है. अतः बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उन लोगों को पसंद नहीं करते कि जो बहुत ही ज़्यादा ज्ञान देते हैं या फिर हमेशा उनकी बातों में तनकीद करते रहते हैं.

Well, listeners, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ट्रैक? So, मैंने सोचा कि हम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल प्लस इंस्पिरेशनल बातें कर रहे हैं, तो माहौल को थोड़ा सा चेंज किया जाए और बीच में थोड़ा सा म्यूज़िक भी ऐड किया जाए. सो साथ ही हमें एक लिसनर ने बहुत ही प्यारी सी फरमाइश बताई थी, तो मैंने उसको प्रोग्राम में शामिल कर दिया. वेल लिसनर्स, आजकल के हवाले से जैसा कि मौसम थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, तो मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है कि मैं आजकल कुछ ज़्यादा ही टर्म लेज़ी और इस तरह से फील कर रही होती हूँ कि बहुत सारा सोने के बाद भी ऐसा लगता है कि नींद अभी पूरी नहीं हुई. तो क्या आप सभी के साथ भी ऐसा हो रहा है या मैं सिर्फ अकेले ही ये सब कुछ महसूस कर रही हूँ? आप भी मुझसे शेयर कर सकते हैं 0115710097 इस नंबर पर जाके. सो वेल लिसनर्स, बहुत हो गए वीकेंड के गाने स्लो. अब हमारी एक लिसनर ने फरमाइश की है हमसे एक एशियन सॉन्ग की, आई मीन टू से हिंदी गाने की. सो क्यों नहीं, ज़रूर हम उनकी इस फरमाइश को पूरा करते हैं और प्रोग्राम में शामिल करते हैं उनका बताया हुआ पसंदीदा ट्रैक. सो द लिसनर्स, आगे सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक. वैसे भी कहा जाता है पिरामिड्स कैन रीबिल्ड बट दिस काइंड ऑफ सॉन्ग्स इज़ नॉट अगेन. तो ये काफ़ी थोड़ा सा पुराना गाना है लेकिन काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल गाना है. तो अभी सुनते हैं तो देखते हैं कि आपको ये गाना कैसा लगा.

सो दे लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ट्रैक? सो आई गेस मैंने ठीक ही कहा था कि पिरामिड्स कैन रीबिल्ड बट दिस काइंड ऑफ म्यूज़िक इज़ नॉट, क्योंकि ये गाना मैंने काफ़ी टाइम पहले ही सुना था, बट स्टिल द वाइब, द सॉन्ग एंड एवरीथिंग, आई थिंक सो कि आजकल के गानों में मैंने इस तरह के लिरिक्स नहीं सुने. सो यही एक चीज़ है जो मुझे इस ट्रैक की सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती है, एंड प्लस द स्टोरी. सो बेसिकली ये ट्रैक एक बहुत ही फेमस ड्रामा सीरियल का ओएसटी है. सो उस ड्रामे के हवाले से ये ट्रैक कुछ इस तरह से ड्रामे के पीक सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं जो कि सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने ये ड्रामा सीरियल देखा है. वैसे तो ये काफ़ी पुराना ड्रामा है. सो इट्स इन 2020 आई थिंक. सो ये 2017 में रिलीज़ हुआ था, तो अब तो काफ़ी साल हो चुके हैं इस ड्रामा सीरियल को. सो आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा. सो अगर आपने नहीं देखा और अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा सा ड्रामा देखें जिसकी स्टोरी लाइन अच्छी हो, प्लॉट अच्छा हो, प्लस एक्टर्स बहुत अच्छे हों, सो आप इस ड्रामा सीरियल को देख सकते हैं. ड्रामे का नाम है मनमायल और स्टोरी तो बहुत अच्छी है. बाकी ट्रैक तो मैंने आपको सुना ही दिया है, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह की है ओवरऑल स्टोरी. सो वेल लिसनर्स, अभी डीवा डायलॉग में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का. सो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब. आप सभी से मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस पार. तब तक के लिए आपने इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहना है, बने रहना है और थ्रू दिस नंबर यानी कि 01157100971 अपना फीडबैक भी शेयर करते रहना है. सो आपसे मिलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के उस पार. तब तक स्टे ट्यून विद अस.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।

हे तो लिसनर्स, वेलकम बैक। अभी वक्त हो चुका है प्रोग्राम यानी टीवा डायलॉग में अपने नेक्स्ट सेगमेंट को शुरू करने का। सो द लिसनर्स, नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा यानी कि मेरा आपका हम सभी का फेवरेट द स्पाइस किचन। जैसे कि लिसनर्स, हमने प्रीवियस वीक में एक न्यू सीरीज स्टार्ट की थी, जिस सीरीज पे हमने थ्रू आउट द होल वीक पाकिस्तानी क्यूजीन ट्राई किए थे। सो आज का जो हमारा ये वीक है, इसमें हम थ्रू आउट द होल वीक टोटली इंडियन क्यूजीन ट्राई करेंगे, जिसमें मैं आपसे शेयर करूँगी बहुत सारी रेसिपीज़, ऐसी रेसिपीज़ जो कि ऑथेंटिक इंडियन रेसिपीज़ होंगी, ना सिर्फ इंडियन बल्कि होंगी भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी पसंदीदा रेसिपी मैं इस प्रोग्राम में शामिल करूँ, सो उसके लिए आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरे पास है आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी, मज़ेदार सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी। सो द लिसनर, जब भी आप किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट में जाते हैं, सो आप ये चीज़ देखते होंगे कि उनके वेज मेन्यू में सबसे जो टॉप ऑफ द लिस्ट एक रेसिपी रहती है, वो होती है रिच, क्रीमी, स्वीट, मज़ेदार सी पनीर बटर मसाला। और ये उन तमाम तर लोगों को बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करती है जो कि हैं वेज लवर्स। सो इसीलिए मैंने सोचा कि जैसा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ये न्यू फूड सीरीज़, तो इस सीरीज़ में सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं इसी टॉप ऑफ द लिस्ट रिच क्रीमी रेसिपी से। सो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा पनीर बटर मसाला, और वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि हम बनाएंगे तो टोटली रेस्टोरेंट स्टाइल में, बट घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए उठाइए जल्दी से अपना पेन, नोटबुक, कॉपी या फिर डायरी, और अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको कर दीजिए थोड़ी देर के लिए स्किप, क्योंकि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार सी ऑथेंटिक रेसिपी। सो अगर आप जल्दी से डायरी या नोटबुक रेडी कर लेंगे तो आप जल्दी से उन सभी इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लेंगे और आपसे कुछ भी मिस नहीं होगा। सो द लिसनर्स, जितनी देर में आप अपनी नोटबुक डायरी रेडी करते हैं, मैं सोच रही हूँ कि तब तक हम ये खूबसूरत सा एक और ट्रैक सुन लेते हैं। तो आइए मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, और तब तक आप अपनी नोटबुक्स रेडी कर लें, फिर इस ट्रैक के उस पार हम स्टार्ट करेंगे ये मज़ेदार सी रेसिपी।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से तमाम सुनती हुई समातों को खुश आमदीद। जैसे कि लिसनर्स, आप सभी सुन रहे हैं डीवा डायलॉग और मैं हूं आपकी होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा। सो जैसा कि मैंने आपसे ब्रेक से पहले शेयर किया था कि हम कमर्शियल ब्रेक के उस पार अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे, सो सबसे पहले तो मैं आपसे इंग्रेडिएंट्स शेयर कर देती हूँ कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए इस रेसिपी के लिए। सो सबसे पहले हमें चाहिए पनीर, अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम्स। आपने इसे अच्छे से क्यूब्स की शेप में कट करके रख लेना है क्योंकि क्यूब्स में प्रेजेंटेबल लगता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। हमारा अगला इंग्रेडिएंट है प्याज, 2 मीडियम साइज़ के, टमाटोज 3 अदद। आगे हम बात कर लेते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, बटर 2-3 टेबल स्पून, ऑयल 1 टेबल स्पून, फ्रेश क्रीम 2 टेबल स्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून। साथ ही साथ अब बात करते हैं कैशनट्स, सो 10 से 12 अदद ग्रेवी में हम शामिल करेंगे। और अब जरा बात कर लेते हैं स्पाइसेस की, क्योंकि स्पाइसेस हर रेसिपी के लिए होते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सो इस रेसिपी में जो जो भी स्पाइसेस ऐड होंगे उसमें सबसे पहले है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, चीनी 1/2 टीस्पून और नमक हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका। सो इंग्रेडिएंट्स रेडी हो चुके हैं, अब चलते हैं किचन में और शुरू करते हैं आज की असल कुकिंग। सो इस रेसिपी को हम बेसिकली 3 सिंपल स्टेप्स में बना सकते हैं जिससे ये बहुत ही अच्छी मज़ेदार डिलीशियस बनेगी और आपका वक्त भी काफ़ी हद तक बचेगा। सो उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी हो चुका है आपसे मिस तो आप 0115710097 इस नंबर पे जाके हमसे पूछ सकते हैं। कोशिश पूरी करेंगे कि हम आपकी हर तरह की क्यूरीज को करें दूर। सो अब जरा आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इसके प्रोसीजर की जाने। लिसनर्स मैं सोच रही हूँ कि उससे पहले क्यों ना प्रोग्राम में एक अदद अच्छा सा ट्रैक शामिल किया जाए, तो हम सुनते हैं एक अच्छा सा ट्रैक और ट्रैक के उस बार फिर हम इस रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं।

सो वेल लिसनर्स, अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी. सो सबसे पहले आपने एक पैन में 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 1 टेबलस्पून बटर, इनको कर लेना है अच्छे से गरम. अब इसमें आपने चॉप्ड अनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, काजू, इन सभी को शामिल कर देना है और इन्हें 2 से लेकर 3 मिनट्स के लिए सॉटे कर लेना है. जब अनियन थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तो इसमें चॉप्ड टमाटोज और थोड़ा सा नमक शामिल कर दें और इसे ढक कर तब तक के लिए पकाएं जब तक आपके टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाएं और तकरीबन गल ना जाएं. सो जैसे ही ये मिक्सचर हो जाए थोड़ा सा ठंडा तो इसे ब्लेंडर में डालकर एक बिल्कुल स्मूथ वेलवेट लाइक अ पेस्ट रेडी कर लें. सो ये है हमारा स्टेप नंबर 1, जिसमें हम मखनी पेस्ट रेडी करते हैं, यानी कि क्रीमी बेस. अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की जानिब, जिसमें हम ग्रेवी रेडी करेंगे. सो अब उसी पैन में हम बाकी का बचा हुआ बटर अच्छी तरह से ऐड कर देंगे. इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर साथ ही साथ बटर दोनों शामिल करेंगे. लेकिन आपने साथ में इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है वो बिल्कुल बीच चले ना, क्योंकि बटर और लाल मिर्च पाउडर को साथ में ऐड करने का मकसद हमारा ये था कि ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा रिच क्रीमी बने. सो फौरन ही इसमें आपने ब्लेंडेड मखनी का पेस्ट शुरू में शामिल कर देना है. इस ग्रेवी को आपने तब तक पकाना है जब तक इसकी साइड से बटर बिल्कुल अलग होना शुरू हो जाए. फिर इसमें गरम मसाला पाउडर, शुगर और थोड़ा सा पानी शामिल करके ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को अपने अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है. अब बारी आती है हमारे स्टेप नंबर 3 की, द फाइनल स्टेप. अब वक्त है हमारे इस रेसिपी की एंट्री का, यानी कि ग्रेवी में पनीर के क्यूब्स को शामिल करने का. सो इसे बहुत ही हल्के हल्के से हाथों से मिक्स करते हुए हम पनीर के टुकड़े बीच में शामिल करेंगे. सिर्फ 3 से लेकर 4 मिनट के लिए लो हीट पर इन्हें पका लेंगे ताकि पनीर जो है उसको उसमें तमाम तरह के फ्लेवर्स ऐड हो जाएं. लेकिन ख्याल ये भी रखना है कि हमारा पनीर जले ना. सो एंड में इस पर फ्रेश क्रीम शामिल करेंगे और कसूरी मेथी को हाथ से मसल के शामिल कर देंगे. एंड बूम, आपका सुपर डिलिशियस रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला हो गया तैयार. जस्ट द फ्यू बेसिक 3 स्टेप्स. सो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे गर्मा गर्म नान, तंदूरी रोटी या जीरा राइस, इनमें से किसी भी एक चीज के साथ सर्व कर सकते हैं. सो आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और फैमिली के साथ इसे नोट फरमाएं, क्योंकि जिनका सबसे बेस्ट टाइम वही होता है जो हम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें. सो खाना पकाना, आपस में शेयर करना, ये सब एक प्यार मोहब्बत का ज़रिया होता है. कहा जाता है ना कि अगर आप शेयर करना चाहते हो लव लैंग्वेज, सो इट्स काइंड ऑफ अ लव लैंग्वेज कि आप अपने लव वंस के लिए अच्छा सा प्यारा सा मज़ेदार सा खाना बनाएं और फिर सब फैमिली मेम्बर्स मिलकर एक साथ खाना खाएं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और उसको इंजॉय करें. सो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी. इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी. अब मुझे यानी अपने होस्ट को ये भी बता सकते हैं कि मज़ीद कौन सी ऑथेंटिक इंडियन रेसिपीज़ हैं जो आप ट्राई करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं उन रेसिपीज़ को अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँ. सो वेल लिसनर्स, जहाँ बात हो चटपटे की वहाँ अगर हम मीठे की बात ना करें तो इस तरह से तो हो नहीं सकता. सो आज मैं आपसे शेयर करती हूँ एक बहुत ही इंस्टेंटली डेजर्ट जो कि बनाना बहुत ही आसान है, प्लस बनता भी बहुत जल्दी है और बहुत डिलिशियस है. सो जहाँ हम इतना चटपटा जंक फूड डेली बेसिस पर खाते रहते हैं, सो हमें ज़रूरत होती है कुछ ऐसी रेसिपीज़ की भी जो कि मज़ेदार हो, डिलिशियस हो और साथ ही साथ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी हो, क्योंकि हेल्दी रहने के लिए हमें हेल्थ कॉन्शियस चीज़ें भी खानी पड़ती हैं ताकि बॉडी का कोलेस्ट्रॉल आगे ना जाए और ज़िंदगी अच्छी स्मूथ चले.
सो हमारी जो आज की सेकंड रेसिपी है, इट्स अ फ्रूट डेजर्ट. सो इसको बनाना बहुत आसान है. आप कोई से भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हैं, अपने अपने तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं इसको बनाती हूँ वो मैं आपसे आज शेयर करती हूँ. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इंग्रेडिएंट्स की. सो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स दरकार है मैं आपसे शेयर करती हूँ. सबसे पहले हमें चाहिए कुछ अदद फ्रूट्स. आप कोई से भी मौसमी फल इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन जो फ्रूट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपसे शेयर करती हूँ. सो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ एप्पल्स, एप्पल्स के साथ ग्रेप्स, ग्रेप्स के साथ मैंगोज, एंड देन साथ ही साथ कुछ अदद आड़ू और खजूर. खजूर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि काफ़ी स्वीटर साइड पर होती है. तो ये चार से पांच फ्रूट हैं जो कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ. वेल, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं. अगर तो आपको स्ट्रॉबेरी पसंद है तो वो ऐड कर सकते हैं, आपको बनाना पसंद है तो वो शामिल कर सकते हैं. बस आपने कोई से भी चार से पांच फ्रूट्स ले लेने हैं. और साथ ही साथ हमें चाहिए फ्रेश क्रीम. अब आप घर के क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो सुपरमार्केट से इजीली परचेज कर सकते हैं. बट इट्स बेटर कि आप डेरी क्रीम इस्तेमाल करें क्योंकि वो रिच क्रीमी होती है और टेक्सचर को भी इम्प्रूव करती है. साथ ही साथ अब ज़रा ड्राई फ्रूट्स की जाने बढ़ते हैं. सो इस रेसिपी में मैं शामिल कर रही हूँ बादाम, पिस्ता और थोड़ी सी किशमिश. अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको किशमिश नहीं पसंद होती स्वीट डिश में, जैसे कि मेवा वगैरह. सो मुझे तो बहुत पसंद है तो इसीलिए मैं उसको इस रेसिपी में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बादाम से एक्स्ट्रा क्रंच आ जाता है और ओवरऑल बहुत यमी लगता है. सो आपने किस तरह से इस रेसिपी को बनाना है, सिंपली आपने कट करके रख लेने हैं तमाम सारे फ्रूट्स. सबसे पहले एप्पल, एप्पल को कोशिश करिएगा कि आप लास्ट में कट करें, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम कोई भी रेसिपी बना रहे हों जिसमें हम एप्पल्स को ऐड करें तो अगर वो ज़्यादा देर कटे रहें तो उनका कलर थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हो जाता है. सो आपने इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप तमाम तर फ्रूट्स को अच्छे से वॉश कर लेना है. वॉश करने के बाद आपने एक बाउल ले लेना है, उस बाउल में आपने आहिस्ता आहिस्ता तमाम तर फ्रूट्स को कट करके रख लेना है. सो ये था हमारा स्टेप नंबर वन जो हो चुका है कंप्लीट. अब जरा स्टेप नंबर टू की जाने बढ़ते हैं. सो अब आपने इसमें शामिल करनी है फ्रेश डेरी क्रीम और आराम से इन तमाम तर इंग्रेडिएंट्स को कर लेना है मिक्स. याद रखिएगा कि आपने ज़्यादा मिक्स नहीं करना, क्योंकि अदरवाइज ज़्यादा मिक्स करने की सूरत में फ्रूट्स टूटना शुरू हो जाएंगे और वो काइंड ऑफ दिखने में प्रेजेंटेबल नहीं लगेंगे. सो आपने बिल्कुल आराम से मिक्स कर लेना है, इतना कि क्रीम और फ्रूट्स आपस में मिक्स हो जाए. सो अब हम इस पे शामिल करेंगे तमाम तरह ड्राई फ्रूट्स. आप ये भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ जो मेरे पास मौजूद थे मैं वो शामिल कर रही हूँ. अब बारी आती है कि इसको स्वीटर साइड पर लेके जाने की. सो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क, जिससे हमारा टेस्ट रिच क्रीमी तो होगा, साथ ही साथ थोड़ा स्वीटर साइड पर भी चला जाएगा. और टाटा, आपका ये मज़ेदार सा डिलिशियस सा रिच क्रीमी फ्रूट डेजर्ट हो चुका है तैयार. अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कब नोश फरमाते हैं. वैसे तो आप आज का जो रेसिपी है जैसे कि पनीर बटर मसाला, उसको खाने के बाद भी आप मीठा खा सकते हैं. वेल, शाम को, दिन को, जब भी आपको अच्छा लगे. सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी. और इस हवाले से अगर आपका कुछ कहना हो या फिर कोई क्यूरी हो तो यू कैन आस्क मी 0115710971 थ्रू दिस नंबर. बाकी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी. और मज़ीद ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए भी हमें बताते रहें.

सो वेल लिसनर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इसी तरह से मज़े मज़े की रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा. एंड माई लवली डिवाज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. और आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो यू कैन आस्क मी. इसके अलावा अगर आप कुछ भी चाहते हैं कि हम उस चीज़ को अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, सो यू कैन ऑल्सो टेल मी. वेल टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज. सो जाते जाते आप सभी के लिए एक अदद प्यारा सा ट्रैक मैं प्ले करती चलती हूँ, और इसी ट्रैक को सुनते सुनते डीवा डायलॉग का ये सफ़र अपने इख्तिताम को पहुँचाते हैं.

0: तेरी आंखों में कई ख्वाब देखे हैं मैंने, तेरी सांसों से जुड़े हर दिन को मैंने इतना जिया है, बस जो दिल की बात तुमसे जुड़ी है तुम तक पहुंचा दो। जाने कैसे, जाने कैसे।
1: All that glitters is not gold. जो दिखता है मोमेंट वैसा होता नहीं है।
2: Let's have a great night and you make a wish.
3: सोचा था मैंने कि तेरा ही बनके रहूं।

0: एक गलत फहमी की बुनियाद पर आपसे शादी जैसे ताल्लुक तोड़े आ रहे
1: जाने ये तन्हाई ले जाएगी अब कहां।
2: करीब होते हुए भी तुम मुझसे
3: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
4: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
5: Attention!
6: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
7: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
8: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
7: सलासा ट्यूशन सेंटर?
8: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
7: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
8: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
7: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
9: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
10: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं रेडियो फजा 97.1 FM के नाम से, और साथ ही में आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं radiofaza.co.uk आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि कौन सा आरजे किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पे करता है सवाल, वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन, मीडिया और आपकी होगी कम्युनिकेशन और होगी मिल्क एंटरटेनमेंट, क्योंकि सारी चीज़ें हमने साथ साथ लेके चलना है। अभी जो है मैं वो रैंडम टॉपिक शामिल प्रोग्राम में करती हूँ, लेकिन अभी मेरी जो है ना वो कोशिश ये है कि कोई टॉपिक रख लिया जाए, लेकिन मेरे पास जो मैसेज आते हैं ना मैं उनको प्रोग्राम में शामिल करती हूँ, फिर उसके हवाले से जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे होती है मैं उसको भी प्रोग्राम में शामिल कर देती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बात का मुझे ही हो। कभी कभार मुझे भी कुछ बातें नहीं पता होती जो आपको पता होती हैं, और कभी कभार कुछ बातें आपको नहीं पता होती जो मुझे पता होती हैं।

0: गया है कि प्रोग्राम बहुत मज़े का जा रहा है, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ हमेशा की तरह, रोज़ की तरह। ओह थैंक यू थैंक यू। और आपकी आवाज़ आज थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, आपकी तबीयत तो ठीक? जी जी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप बताएं आपकी तबीयत ठीक है? खैर उसी के साथ उन्होंने एक छोटा सा पैगाम शामिल करवाया, बड़ी खूबसूरत सी बात, कि हर गुजरा हुआ लम्हा एक सबक होता है, हर गुजरा हुआ लम्हा एक सबक देता है, हर जख्म में कामयाबी का हक देता है, मतलब हर जख्म हमें कामयाबी का हक देता है। ओके ओके ओके मैं समझ गई। अभी इसके बारे में मुझे डिस्कस आपसे करनी है और बहुत सी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास इसके हवाले से, तो वो अगर मैं अभी बोलने शुरू कर दूंगी, उसको शामिल करूंगी, तो वही बात आ गई कि जब कब जब स्टार्ट कर लेते हैं बातें करने का मज़ा नहीं लग जाता, तो प्रोग्राम में वो जो एक कमर्शियल ब्रेक होती है ना, उसका समय हो जाता है आने का, तो फिर वो इन्फॉर्मेशन को सही से मैं आप तक पहुँचा भी नहीं पाती, बात कहाँ रुकती है फिर कहाँ से शुरू होती है, ये चीज़ मुझे भूल जाती है क्योंकि थोड़ी सी भुलक करूँ पता नहीं चलता मुझे। खैर कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा, बट हम इसकी इन्फॉर्मेशन को मेरे ख्याल से ब्रेक के बाद आके कंटिन्यू करेंगे, ताकि हमारा जो वो एक हमारी जो एक लाइन है हमारी वो जो एक चलेगी इन्फॉर्मेशन की लाइन वो टूटे ना। बट अभी मैंने शुरू कर दी तो वही बात आ गई कि ब्रेक आ जानी है। वो आपकी बात को प्रोग्राम में आकर दोबारा से शामिल करेंगे, लेकिन अभी के लिए प्रोग्राम में एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हाल होने वाली है। सो इतना बोलूँगी कि साथ दीजिएगा, साथ होने का एहसास दिलाइएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM एंड ऐप।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-772-92926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ, ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं, चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है, होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich

0: सवाल शादी जी का साथ होने का एहसास दिलाएगा। ट्यून करके रखिएगा 97.1 FM को एंड डैप को।
1: नैना दिया पारियां आजा होने
0: मिलते हैं ट्रैक्स के उस पार।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baseford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

देखिए तेरे बिन 28 दिसंबर से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

साथ वंस अगेन वेलकम बैक, एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समाता को रेडियो वर्जन 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। उसी के साथ साथ प्रोग्राम में कुछ ट्रैक शामिल किए जा रहे थे क्योंकि बस फरमाइश थी, मैंने सोचा क्यों ना उसको शामिल कर दिया जाए। अभी प्रोग्राम में छोटी सी कमर्शियल ब्रेक आ रही थी, कमर्शियल ब्रेक के बाद रही आपसे मुलाकात।

अभी मेरे पास एक बड़ी ही खूबसूरत ट्रैक की फरमाइश मौजूद है और बड़ी मजे का ट्रैक है, मुझे भी ये ट्रैक बहुत पसंद है। सो मेरी अभी कोशिश ये रहेगी कि क्यों ना प्रोग्राम में इसको भी शामिल कर दूं। वैसे मैंने अपना लास्ट सेगमेंट जो है ना वो ट्रैक का ही रखा होता है, सॉन्ग्स का रखा होता है कि जाते जाते जो है वो आपकी फरमाइशों को पूरा करूँ। और अभी जो है एक और ट्रैक प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ट्रैक पसंद आएगा, साथ दीजिएगा, साथ होने का एहसास दिलाइएगा। ट्यून करके रखिएगा 107.1 FM को एंड ऐप को।

0: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक।
1: ये तेरी भीगी आंखें,
0: एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम संतरी समात को रेडी फॉर 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से।
1: परिंदा है ये इश्क रे मनमातम।
0: उसी के साथ साथ अभी मेरे पास चंद मैसेजेस आए हैं, वो मैं प्रोग्राम में शामिल करवाना चाहूंगी। नाम लेने से इनकार मना किया गया तो मैं नाम नहीं लेती प्रोग्राम में, बट बड़ी प्यारी बात हमारे टॉपिक के रिलेटेड दिया है, मतलब जो चांदनी जी ने एक छोटा सा मैसेज प्रोग्राम में शामिल करवाया था, तो उसी तरह का एक छोटा सा मैसेज जो हम तक रिसीव हुआ है कि जो कल सोचा था आज वो करने का वक्त है। जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाया जाता है। बिल्कुल, जो कल सोचा था वो आज करने का वक्त है। वक्त हमें खुद लाना पड़ता, आता नहीं है, इस बात का हमें सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम चाहते हैं कि वो ना हो, लेकिन वो हो जाती हैं, लेकिन कभी कभार जो है ना वो हमारे लिए बेहतर ही होती है, बेहतरी की तरफ हमें लेके जाती हैं। अभी जो है वो मेरे आपसे गपशप करने का समय है, लेकिन वही बात आ गई कि ट्रैक जो है वो पीछा ही नहीं छोड़ रही, मेरे पास फरमाइशें कुछ इस तरह से आई जा रही हैं। और अभी प्रोग्राम में आपके साथ एक छोटा सा मैसेज शामिल किया है मैंने, इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन अगर मैं बताऊँ तो कुछ चीज़ें जो है ज़िंदगी आसान हमें खुद बनानी पड़ती है। कैसे बनानी पड़ती है, किस तरह से बनानी पड़ती है, ये हमें पता होना चाहिए कि कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। वो कहते हैं ना कि कुछ रिश्तों में अंधा, गूंगा और बहरा होना पड़ता है, तभी वो रिश्ते कामयाब होते हैं।
1: दिल रखा सांब तेरे ले, मेरा हर सॉन्ग तेरे ले,
0: और अगर आप वही बात आ गई कि अगर आपकी किसी ऐसे इंसान से बहस हो रही है जो आपको बहुत प्यारा है, जिससे आप खोना नहीं चाहते, तो उसके आगे खामोश हो जाएं, क्योंकि बहस अगर जीत गई तो आप इंसान को हार जाएंगे। हाँ, अगर आपको इंसान ज़रूरी है तो आप बात को भूल जाएं, अगर आपको बात ज़रूरी है तो फिर आपको डेफिनेटली इंसान ही भूलना पड़ेगा। हमें अपनी माजी को खुद बदलना पड़ेगा, हमें जब गलतियाँ हमने पीछे की हैं उसको आगे नहीं हम दोहराएंगे तो हम ज़िंदगी में बहुत कामयाब होंगे। सवाल इसी के साथ साथ प्रोग्राम में शामिल होने का बेहद शुक्रिया जिन नई समातों ने आज रबी फजल 97.1 एफएम को ट्यून किया है, बेहद शुक्रिया आप तमाम नई समातों का। प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका कार एक बार फिर से बता देते हैं, 01157100971। इस खूबसूरत से नंबर कीजिएगा सेफ, और सेफ कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं।
1: रहूंगा बस तेरे साथ ही, किसी से करूंगा ना बात भी ना मेरी।
0: इसके अलावा मुझे गूगल भी सुन सकते हैं, radiofaza.co.uk। आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि कौन सा आज किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पे करता है, सफल आपको वहाँ से मिल जाएगी। प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम के नाम से। और अगर आप भी अपनी आवाज़ का जादू इस आवाज़ की दुनिया में जो गाना चाहते हैं तो आप हमारी मार्केटिंग टीम से रब्ता कर सकते हैं। अभी के लिए जो है मेरे पास एक छोटे से ट्रैक की फरमाइश मौजूद है, सो कोशिश ये रहेगी कि ना उसको भी पूरा कर दें। मेरी कोशिश होती है कि मैं पंजाबी ट्रैक प्रोग्राम में शामिल करूँ और आपकी फरमाइशें भी पूरी करती रहूँ, और आपको वो क्या बोलते हैं, निराश, आपको निराश नहीं करना हमने सबसे पहले।
1: जिंदगी में तेरे बिना सुर है ना तार।
0: एक तो जब मुझे कोई गाना ढूंढना होना तो मुझे मिलता नहीं है, मेरा सबसे बड़ा मसला ये है।
1: कमाल वे सीने से लगा ले यू ना अब मुझे।
0: अभी आप जिस झिंगली आवाज़ सुन रहे हैं ना अली जफर की, इन्हीं की आवाज़ में ट्रैक की फरमाइश आन पहुंची है, सो बोला ये सुनते हैं इनकी फरमाइश को, यानी कि इनके ट्रैक को। अवल साथ दीजिएगा, साथ होने का एहसास दिलाइएगा, ट्यून करके रखिएगा फजा 97.1 एफएम को एंड ऐप को।

जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। उसी के साथ साथ प्रोग्राम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हाल हो चुकी थी। कमर्शियल ब्रेक के बाद रही आपसे मुलाकात। अभी जो है वो हमारे दरमियान वक्त हो जाता है हमारे अगले सेगमेंट का, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट में रखा होता है म्यूजिक का, तो मैं म्यूजिक उसमें प्ले करती हूँ। सो अभी मेरे पास जितनी फरमाइशें हैं हम उन्हें को ही पूरा कर लेते हैं। और अगर कोई फरमाइश आपकी हो और भी तो बताइएगा, किसी को कोई ट्रैक डेडिकेट करना चाहे तो वो बताइएगा, या फिर कोई ट्रैक आप सरोराज को डेडिकेट करना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता दें, मैं कर दूँगी।

अभी एक बड़ी खूबसूरत सी ट्रैक की फरमाइश मेरे पास मौजूद है, तो आइए उसको कहते हैं तो शामिल कर देते हैं हम प्रोग्राम में। लेकिन उसके लिए आपने करना यह है कि अपने दिलों को थाम लेना है, ट्यून करके रखना है 107.1 FM को, और साथ देना है और साथ होने का एहसास दिलाना है।

0: उतनी जफर के करीब हो रही थी। दुनिया के लिए जफर बस एक पहेली था, लेकिन उसको सुलझाने में मैं उलझ रही थी। वो तूफान की तरह मेरी जिंदगी में आया और मैं उम्मीद की तरह उसके साथ बह गई।
1: तुम्हें पता है लाहौर का पुराना नाम लोहावर था, यानी लोहारों का शहर। इस जगह की पहचान उसके लोहारों से है। अंग्रेज यहाँ पे मशीन लाना चाहते हैं जिससे सारे लोहार बेरोजगार हो जाए। मुझे समझ नहीं आता

0: तमाशे थिएटर भर देते हैं, इससे फिल्मों का भी फायदा हो जाता है।
1: तुम इस तमाशे में शामिल?
0: तुम्हारी जिंदगी के तमाशे में शामिल काफी है।

0: कुछ बदल गया है।
1: नहीं तो?
0: आपकी आवाज में नहीं, आपके मन में।

0: जिनकी बोतल है।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एक्सप्रेस पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
6: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
8: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 0771522।
9: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM.

0: So hot.
1: This is a public service announcement.
2: Everybody. The station
3: that plays
4: foot tapping music.
5: Huzzah 97.1 FM.
6: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station. That plays
2: foot tapping music.
3: Hazar 97.1 FM.
4: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: 55 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
0: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.

नजम से गजल बन गई, तू रोज ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
3: पंगड़े पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

ağır yakin se bender iştim ki saat mehum Fahra Mirza. आप सब लोगों को जो कि इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, खलूस भरा मोहब्बतों भरा सलाम पेश करती हूँ। इस यकीन के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मुझे सुनने के लिए ट्यून इन किया होगा रेडियो फजा 97.1 FM। खूबसूरत सा दिन और हल्का फुल्का सा ये मौसम, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं और ना ही ठंडा है। बस कहा जा रहा है कि ये वाला हफ्ता ही ऐसा मौसम हमें मिलेगा और उसके बाद फिर वही सर्दियाँ, वही लंबी रातें और क्लाउडी डेज, वो भी खूबसूरत सा वक्त होता है। और वक्त की एक बात के वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजर जाता है। सो ये दो घंटे कैसे हमारी जिंदगियों से निकल कर ज़िंदगी एक दिन पुरानी हो जाएगी, शायद हम सबको इस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि ज़िंदगी पुरानी कैसे होती है। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि कपड़े पुराने हो जाते हैं, बर्तन पुराने होते हैं, घर पुराने होते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि जिंदगी कैसे पुरानी होती है? रिश्ते पुराने हो जाते हैं, लोग पुराने हो जाते हैं, जिंदगी एक दिन पुरानी हो जाती है। और कई साल गुजरने के बाद जिंदगी कई साल पुरानी, और फिर उस पुरानी जिंदगी में क्या होता है कि लोग, उनके पास वक्त नहीं होता आपके पास बैठने के लिए। पुराने लोगों के पास पुराने वक्त के किस्से सुनने के लिए, कहानियां सुनने के लिए। सो जी, कुछ पुरानी कुछ नई कुछ फ्रेश बातें होंगी आप सबके साथ, और बातें तो हमेशा हम तसल्ली ही से करते हैं। सो सुनो ठहरो कि मुझको एक ज़रूरी बात करनी है और बात तसल्ली से करेंगे। यकीनन आप लोग तसल्ली के साथ सुनेंगे। कुछ वक्त ठहर कर, कुछ लम्हे अपनी गाड़ियों को रोक कर, अपने जहन को एक जगह पे, अपनी त्वचा को मरकूज करके, क्योंकि कहते हैं कि कभी कभी कोई बात ऐसी दिल में उतरती है, ऐसी ठहरती है बात कि वो हमेशा याद रहती है। और इकबाल ज़रीं वैसे ही तो नहीं बनते, ये सब वो कोल होते हैं जो हम कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, सुनते हैं, और फिर वो हमारे लिए मशले राह बन जाते हैं। सो ढेर सारा सलाम जी, हमारा बहुत ही मोहब्बतों भरा खलूस भरा सलाम कबूल कीजिए। देखते कानों को नहीं कहेंगे, देखती आंखों को नहीं कहेंगे, सुनते कानों को फाहरा मिर्ज़ा का सलाम पहुंचे।

0: सुने वक्त तो लगता।
1: और ये प्यार का पहला खत लिखने में वक्त क्यों लगता है? क्या पहले खत में एहतियात जरूरी होती है, या आप सोच रहे होते हैं, इंतहाब कर रहे होते हैं अच्छे अच्छे से लफ्जों का, गहरी बातों का? क्योंकि आपने किसी के दिल में जगह बनानी होती है, सो जगह बनाने के लिए अच्छे लफ्जों का इंतहाब, दिल में उतरने वाले जुमले, अच्छी तहरीर और दिल की बातें कुछ छुपानी भी होती हैं और कुछ सामने जाहिर भी करनी होती हैं। इसलिए प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है।
0: वक्त तो लगता है, गहरे जख्म।
1: किसी ने क्या हुका के लिखी हो जिन पे वक्त की तहरीर दोस्तों, लिखी हो जिन पे वक्त की तहरीर दोस्तों, फुर्सत मिले तो ऐसे भी चेहरे पढ़ा करो।
0: वक्त तो लगता है।
1: शायर लोग चेहरों को कहा करते थे किताबी चेहरे, और उसके चेहरे पर तो तहरीर लिखी सामने नजर आ जाती है, उसका चेहरा तो खुली किताब की तरह है। सो ऐसे चेहरे होते हैं, ऐसी आंखें होती हैं जो कि खुली किताब होती हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, उन पे वक्त ने जो तहरीर लिखी होती है वो भी पढ़ी जा सकती है। क्या आपको कभी ऐसे चेहरे नजर आए, कभी खुली किताब की तरह की आंखें नजर आए जो खुले आपको बता रही हूँ कि उदास हैं, और क्या मतलब उनका नजर आ रहा है जो कुछ उनके अंदर चल रहा है? ऐसे चेहरे यकीनन बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम चेहरे पढ़ने के इतने आदी नहीं हैं, उनको चेहरे पढ़ने बिल्कुल भी नहीं आते। लेकिन बहुत से लोग किसी की आंखों को देखकर उनकी आंखों को पढ़ लेते हैं। आंखें हमारे चेहरे पर वो दो आईने हैं जो आपके दिल का हाल बहुत आसानी के साथ बयां कर देती हैं। आंखों पे शायरों ने बहुत कुछ लिखा, और आंख इंसान के चेहरे पर वो खूबसूरत आईना है जो देखती भी है और दिखाती भी है।

और जी ये प्यारा सा गीत सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या, लिरिक्स सॉन्ग्स किशोर कुमार जी की आवाज थी और आप सुन रहे इसे FM 97 से। जैसा कि हमने कहा कि चेहरे पर ये जो दो आईने हैं जिनको आंखें कहा जाता है, हर चेहरे पर लगी आंखें उसकी शख्सियत के बारे में बताती हैं। कुछ लोगों के पास शरारती आंखें होती हैं, कुछ के पास बहुत मासूम सी आंखें, कुछ की बहुत शर्मीली सी, कुछ की बहुत उदास आंखें होती हैं और कुछ की घबराहट वाली आंखें। किसी के पास नीली आंखें होती हैं, किसी के पास ब्राउन, किसी के पास ब्लैक और किसी के पास हम बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ किस्म की आंखें देखकर, लेकिन हर चेहरे पर सजी ये आंखें उसका अहवाल बताती हैं, उसके बारे में बताती हैं। और आंखें हमेशा

हाल को ना लिबास को, वो एक अजीब सी दुनिया में गुम है ये बच्चे। ऐसा महसूस होता है कि एक किताब हमारे हाथों में थमाएगी जिसे हम पढ़ते हुए उस कहानी और उसके किरदारों से पूरी तरह से महसूस हो रहे थे, हम उन किरदारों से पूरी तरह से वाकिफ थे और हम उनसे इतने ज़्यादा अटैच्ड हो गए थे कि जब उस किताब को हमारे सामने से हटाया गया, वो लोग हमारी दुनिया से अलग हुए, रुखसत हुए, तो नई किताब नए लोगों के साथ मानूस होने में शायद हमें कुछ वक्त लगे। उस पुरानी किताब को पढ़ते हुए हम आखिरी सफ़े के करीब करीब थे कि एकदम किसी ने आकर वो किताब हमारे हाथों से हटा ली और हमारे सामने एक नई किताब, सोशल मीडिया और पता नहीं क्या क्या हमारे सामने रख दिया। नए किरदार, नए लोग, नए तकाजे, नई ज़रूरियात, एक अफरा तफरी, एक रश, भागम दौड़, ना बड़े की तमीज़ ना छोटे का एहसास, रिश्तों का कोई यानी कि ज़रूरत ही नहीं रही लोगों को। और हम लोग इस किताब को पढ़ने की कोशिश में पता नहीं क्या कुछ खो बैठे। समय ऐसा महसूस होता है कि जैसे इस नई किताब को हाथ में थामते ही और बदलते हालात और वक्त ने हर इंसान को मायूस किया है, स्पेशली वो लोग जो दो किस्म की चीज़ों को देख चुके थे, एक वो जो हमसे पीछे वाले और एक वो जो हम लोग थे मिडल वाले दौर के और फिर हमसे आगे वाले लोग। सो ये तीन किस्म की चीज़ों को देखने वाले लोग तो बहुत परेशान हुए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने तस्वीर लेना छोड़ दी कि हमारी तस्वीरों को कौन देखेगा। लोगों ने एल्बम्स बनाने छोड़ दिए कि इन एल्बम्स के लिए किसी के पास वक्त ही नहीं होगा, कौन देखेगा इन एल्बम्स को। बल्कि यूँ हुआ कि लोगों ने पुरानी एल्बम्स में से भी चंद फोटो रख के बाकी एल्बम्स को डिस्पोज कर दिया। लोगों ने वीडियोस को सेव करना छोड़ दिया। और फिर लोग तस्वीरें बनाकर कुछ दिनों के बाद डिलीट कर देते कि इनको रखने का क्या फायदा, कौन देखेगा इनको। यकीन कीजिए कि ये सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। दिया, कौन देखेगा, किसके पास वक्त है। और किसी को मोहब्बत करने से नफरत हो गई कि ये मोहब्बतों का दौर ही नहीं, मोहब्बतों को आजकल कौन समझता है। सच्ची मोहब्बत किसके लिए करें, कौन समझ सका, कौन समझेगा इस सच्ची मोहब्बत को। क्योंकि मोहब्बतें भी रंग बदल रही हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इधर कभी उधर। सो लोगों ने सच्ची मोहब्बतें करने का इरादा भी तर्क कर दिया। किसी को तन्हाई पसंद आ गई, वो शोर से भागने लगा। किसी को अपने रिश्तों से नफरत होगी, वो अपने रिश्तों से दूर होने लगा। किसी ने बाहर जाना छोड़ दिया, किसी ने लोगों से मिलना मिलाना छोड़ दिया। ऐसा सब क्यों हुआ, क्या सोशल मीडिया ने लोगों को इतना परेशान किया, या ये इस वक्त की डिमांड थी। ये सब कुछ परेशान कुन भी है, लेकिन उसके साथ वो क्या कहते हैं ना, बेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख। लोग वक्त के साथ उम्मीदें भी लगाए हुए हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त की इंजॉयमेंट टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल मुख्तलिफ। सो इस पर बात करना चाहें तो ज़रूर शामिल हो, हमारा नंबर स्टूडियो का 01157100971 है। 5 से 7 बजे तक हमारा और आपका साथ, और बहुत से लोग हमें सुन रहे हैं, कुछ मैसेजेस पहुंचे हम तक, शामिल करेंगे उन्हें। स्टेट यूनियन रेडियो फजा 97.1 FM।

जी प्यारा संगीत आवाज थी सुरेश वेदाकर, आशा भोसले, और ये फिल्माया गया था सनी देओल और पूनम ढिल्लों पर। प्यारा संगीत ओल्ड इज गोल्ड, और आपने सुना इसे एफएम 97 से। जी मुझे सुन रहे अली डरबी से, बहुत शुक्रिया अली, शामिल होते हैं हमेशा, हौसला अफजाई करते हैं और अपनी फीडबैक ज़रूर देते हैं। मौसम आपको अच्छा लगा अली? आपने कहा कि मौसम अच्छा है, लेकिन ये सोच कर के ये कुछ दिन ही हमारे साथ है और फिर वही दिन होंगे, लेकिन उसके बाद इस साल वाले मौसम को तो अली हम सब ने बहुत इन्जॉय किया है। 3 माह हमें ठीक ठाक गर्मी मिली, पंखे हमारे घरों में जो थे वो तो बेचारे चलते चलते ख़राब हो गए, क्योंकि यहाँ के नहीफ से पंखे, कमज़ोर से पंखे हम लोगों ने सिर्फ इसलिए रखे थे कि ज़रा सी गर्मी हुई तो हमने एक दिन के लिए उनको चलाया, और दूसरे दिन फिर हमारी सेंट्रल हीटिंग ऑन हो जाती थी। लेकिन इस बार गर्मियों ने हमें बताया जी कि पंखों का इंतज़ाम अगले साल के लिए ज़बरदस्त होना चाहिए, और ज़रा मज़बूत से ताकतवर पंखे चाहिए, है ना, पहलवान किस्म के पंखे हमें चाहिए, क्योंकि इन छोटे कागज़ी पंखों से हमारा गुजारा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया अली, खूबसूरत से मैसेज के साथ आप आए, और अलीना आप सुन रही हैं, बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम को आपने बहुत इन्जॉय किया, और हमारा प्रोग्राम सुनने के बाद अलीना कहती हैं कि हमने जाके बहुत सारे आम खरीद के लाए, उन्हें अच्छा सा ठंडा किया ठंडे पानी में, और फिर आपने कहा कि हमने कुछ मिल्क शेक बनाया और कुछ आम फैमिली के साथ मिलकर खाए। बहुत शुक्रिया अलीना, प्रोग्राम सुनने के बाद आपने आम खाए अकेले अकेले, ये दुख तो हमें रहेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया, ये खूबसूरत सा प्यारा सा गीत अलीना आपके नाम जा रहा है, और यकीनन पिछले हफ्ते आपने आम खाए, और इस हफ्ते जी आप क्या खाने जा रही हैं ज़रूर बताइएगा।

और जिस प्यारे से गीत को नबीहा आपने भी सुना और आपको भी अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का और प्रोग्राम में शिरकत का। सो स्टेट यूनियन रेडियो फजा 97.1 FM नंबर एक बार फिर से बताएंगे 01157100971 www.radiofaza.org.uk पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और साथ देने के लिए जी हाँ ट्यून इन करना होगा FM 97.1। ये गीत बहुत प्यारा सा गीत पाकिस्तानी फिल्म मोहब्बतें सच्चियां से लिया गया ये गीत था और इस गीत को जब जब भी हमने सुना हमें हमेशा बहुत अच्छा लगा। इस गीत से पहले क्या कहेंगे कि आप लोग साथ दे रहे हैं, अली डर्बी से आपका मैसेज था, नबीहा आपका था, अलीना आपका मैसेज था। और प्रोग्राम को आगे ले जाने से पहले क्या कहेंगे, साथ दीजिएगा क्योंकि हमें पता है कि आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। और ये सब साथ हमारे हैं हवा के दोष पे, आवाज़ के साथ ही। आवाज़ का एक बहुत गहरा ताल्लुक है हमारे साथ, हम लोगों को चेहरों से नहीं आवाज़ से पहचानते हैं क्योंकि इतने सालों से रेडियो पर काम करते हुए हमें पता चला, एहसास हुआ कि आवाज़ कितना गहरा असर रखती है, अफेक्ट करती है और आवाज़ के ज़रिए आप पहचान जाते हैं लोगों को। सो जब भी किसी से रिश्ता बनाना हो, बात करनी हो, कोई लेन देन कुछ भी हो, कुछ अरसा लोगों के साथ फ़ोन पर बातचीत करते रहा करें क्योंकि बात ही आपको बता सकती है कि टेम्परामेंट कैसा है, कितनी देर आप किसी को धोखा दे सकते हैं, कितनी देर बन सकते हैं, कितने सब्र वाले हैं, कितने पेशेंट वाले हैं, कितना ठहराव है, कितनी सादगी है और कितनी अकीदत है, कितना एहतराम है। ये प्यारा संगीत उन तमाम लिसनर के लिए जो कि इस वक्त मुझे सुन रहे हैं कहीं पर भी, फिल्म मोहब्बतें सच्चियां का गीत वीना मलिक और जी किन पर फिल्माया गया था, उड़ गई या नींदरा खलोगी रात, एक प्यारा सा क्लासिकल सा गीत। और इस फिल्म के सभी ही गीत बहुत अच्छे थे और रेडियो फजा पर बहुत अरसा तक शाम के प्रोग्रामों में ये गीत चलते रहे। इन गीतों के साथ हमारी बहुत सारी यादें भी वाबस्ता हैं और क्या कहते हैं कि गीत को जब भी सुनते हैं आपको कुछ ना कुछ ज़रूर याद आता है। सो इस प्यारे से गीत को मिलकर सुनते हैं स्टेट यूनियन

0: चैन,
1: और मैं तुम्हारे लिए बारिश नहीं रोक सकती लेकिन तुम्हारे साथ भीग जरूर सकती हूँ। अगर तुम्हारी आंखों में नींद ना हो मैं तुम्हारे साथ जाग सकती हूँ। अगर मैं तुम्हारी परेशानी का हल नहीं निकाल सकती तो तुम्हारा हाथ थामे खड़ी रह सकती हूँ, लेकिन ये वादा है कि मैं तुम्हारे लिए जो मुमकिन हो कर सकती हूँ। समझ, ये वो दौर था जब लोग ऐसे वादे किया करते थे और इन वादों पर पूरा भी उतरा करते थे, और हम उस दौर के लोग हैं जिन्होंने सच्ची मोहब्बतें भी देखी, बुजुर्गों की शफकत भी देखी, सायादार दरख्तों की छाँव में भी बैठे और अपने बुजुर्गों का प्यार भी देखा, इंतज़ार भी देखा और उनके शफकत भरे हाथ अपने सरों पर भी महसूस किए, उनकी नसीहतें भी सुनी, उनकी डांट भी सुनी, और बहुत सारी चीज़ों पर जब उन्होंने हमें रोका तो हम उन चीज़ों पर रुक भी गए। और फिर उसके बाद जब दौर बदला, क्योंकि हम ठहरे हुए दौर के लोग थे जिन्होंने बुजुर्गों के इतने सारे रूप देखने के बाद बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, और फिर हमारे देखते ही देखते जब दौर बदला, इंटरनेट का दौर आया, सच्ची मोहब्बतें कहीं गायब होने लगी, दुनियादारी में फंस गई, लोगों ने घर ऊंचे कर लिए और अपने इर्द गिर्द ढेर सारा महंगा फर्नीचर, डिज़ाइनर कपड़े, बड़ी गाड़ियाँ, बहुत कुछ रख लिया। तो एक दिन एक बच्ची ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आपको पता है कि अल्लाह मियाँ हमसे इतने दूर क्यों हैं? तो माँ ने उस मासूम बच्ची को उसके इस सवाल पर हैरानी से देखते हुए कहा कि आप ही बताएं कि अल्लाह मियाँ हमसे इतने दूर क्यों हैं? उस बच्ची ने कहा कि मामा, अल्लाह मियाँ हमसे इसलिए दूर हैं कि हमने बहुत सारी दूसरी चीज़ों को अपने करीब कर लिया है। ऐसे बहुत सारे सवाल यकीनन हमारे जहनों में भी आते हैं, हमारे बच्चों के जहनों में भी आते हैं, और आज का ये उलझा हुआ बच्चा, क्या हम इसको सुलझा पाएंगे? हम इसको उस सच्ची मोहब्बत से रोशनास करवा पाएंगे या नहीं? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके जहनों में छोड़ रही हूँ।

0: मैं सोचता था कि मैं बहुत नफरत करता हूँ तुझसे। ख्वाब देखता था कि तू मेरे सामने आ जाए और मैं तुझे गोली मार दूँ। आज जब तू सचमुच सामने आ गया है तो मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। यार ये क्या धंधा है हमारा? खुद अपने हाथ से अपने बच्चे को गोली मारनी पड़ती है और फिर उसके जनाजे को कंधा देना पड़ता है। लगता है मेरे बुरे कर्मों की यही सजा है।
1: जो हो गया सो हो गया, मैं अब आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। मैं सिमरन को लेकर हमेशा के लिए हिंदुस्तान जा रहा हूं। मुझे जाने दीजिए।
0: जी तो यही करता है, पर क्या करूं बेटा। अगर तुझे मारकर मिसाल पैदा नहीं की तो लोग मुझे हिजड़ा कहेंगे। मेरा हर लड़का आशिक हो जाएगा और किसी ना किसी रंडी के चक्कर में खान से बगावत करेगा। अब फुल स्टॉप तो लगाना ही पड़ेगा ना। पर तो फिक्र मत कर बेटा, तुझे मार के मैं मिसाल कायम करूंगा और तेरी लैला को जिंदा रख के तेरे मरने के बाद रोज उसे छत पे नंगा उसके गले में पट्टा डालकर नुमाइश करूंगा ताकि हर आने जाने वाला देख ले कि बाप बेटे के बीच में आने वाले का क्या हश्र होता है। तू समझ रहा है ना बेटा? मेरे आदमी रोज उसके जिस्म के एक एक हिस्से से खेलेंगे ताकि वो जान सके कि किस तरह हम।
1: मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ।

और ये गीत आपने सुना फिल्म थी गैंगस्टर, जो कि 2006 में बहुत ही एक पॉपुलर फिल्म थी। और इसका ये प्यारा सा गीत या अली मिस्टर सेठी, आपने पुरानी यादों को ताज़ा किया, दोबारा से नॉटिंगम में आए और उन दिनों को याद किया जब हमारा रात का शो हुआ करता था। बहुत शुक्रिया और वेलकम बैक टू नॉटिंगम। समीन कहते हैं ना कि पुराने लम्हे पुरानी यादें कभी भी पुरानी नहीं होती, वो सीधा नहीं होती, हमारी यादों के कंप्यूटर में हमेशा महफूज रहती हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले एक कश्ती देखी तो पिछले बीते सालों का एक खूबसूरत दिन मुझे भी बहुत याद आया, हालांकि जगह भी और लम्हा भी दोनों मुख्तलिफ थे, पर इस लम्हे को माजी के साथ जहन ने जोड़ लिया। किसी की कही हुई कोई बात, किसी के साथ गुजारा हुआ वक्त, कोई लिबास, कोई पकवान हमेशा आपकी यादों में रहता है, कोई खुशबू जो आपने कहीं पर महसूस की हो, सूंघी हो, वो खुशबू भी हमेशा, जब भी कहीं पर वो खुशबू आपको अपने इर्द गिर्द बिखरी नजर आएगी तो यकीनन आपको वो लम्हा, वो शख्स, वो सब कुछ याद आएगा। ये इंसानी फितरत है कि हम अपने बीते लम्हों से कभी भी अपना दामन छुड़ा नहीं सकते, और ये सब चीजें हमें कहीं दूर माजी में ले जाती हैं, और फिर हम माजी में खो जाते हैं। हाल, माजी, मुस्तकबिल, सब कुछ तो हमारे साथ साथ चलता रहता है, इसी को जिंदगी कहती है। सो जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए क्या करना होता है कि जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जीना होता है, अपने हर आज को, गुजरे कल को और आने वाले कल को, तीनों को मिलाकर एक मुरक्कब तैयार किया जाता है जिसको जिंदगी कहते हैं। बहुत शुक्रिया उन सब लोगों का जो मेरे साथ सच और कुछ पुरानी और कुछ नई बातों को शेयर कर रहे हैं। मिसिस हॉन वुलटन से हमेशा हमें सुना करती थी, कुछ अरसे से उनकी तबीयत इतनी ज्यादा ठीक नहीं थी, और आज बहुत दिनों के बाद मिसिस हॉन आपका मैसेज भी मिला, और ये प्यारा सा गीत मिसिस हॉन आपकी पसंद का, आप ही के लिए।

और जो ये रोकने की रिक्वेस्ट होती है कि तू थोड़ी देर और ठहर जा, कभी कभी किसी को जब कोई कहता है कि थोड़ी देर ठहर जा तो लोग रुक जाते हैं अगर उनके पास वक्त हो, और अगर वक्त ही ना हो किसी के पास तो वो आपकी रिक्वेस्ट को कैसे कबूल करेगा, है ना। तो ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब आपका दिल चाह रहा होता है कोई दूसरा रुक जाए, लेकिन वक्त की कमी और मसरूफियत की वजह से वो रुक नहीं पाता और आपको उसको रुख्सत करना ही पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ कहना ही नहीं पड़ता और जाने वाला खुद ही रुक जाता है, क्योंकि उसका भी दिल चाह रहा होता है कि वो रुक जाए, ठहर जाए, थम जाए, कुछ लम्हे अपनी ज़ात के लिए निकाल ले। सो ये प्यारा सा गीत ही उन्हीं लम्हों के नाम जा रहा है जो कि कहीं पर शायद रुक के, ठहर गए, थम गए। और ये प्यारा सा गीत उन्हीं लम्हों के नाम रेडियो फजा 97.1 FM से 7 बजे तक आपका और मेरा साथ, और मुझे कहते हैं फाखरा मिर्सा।

और उससे पहले जैसे कि हमने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए बारिश नहीं रोक सकती, लेकिन तुम्हारे साथ भीग जरूर सकती हूँ। अगर तुम्हारी आंखों में नींद ना हो, मैं तुम्हारे साथ जाग सकती हूँ। अगर मैं तुम्हारी परेशानी का हल नहीं निकाल सकती, तो तुम्हारा हाथ थामे खड़ी जरूर रह सकती हूँ। लेकिन इन सब के बाद भी जो मुमकिन हो, जो मेरी बसात में हो, वो कर सकती हूँ। सामने ये वादे, ये इकरार, ये सब कुछ हम किसके लिए करते हैं? उन सब लोगों के लिए जिनको हम प्यार करते हैं, जिनका एहतराम होता है हमारे दिलों में। और एहतराम का होना दिलों में बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि ये प्यारा सा गीत आज के प्रोग्राम में शामिल करना बहुत ज़रूरी था। और फिल्म थी जी क्योंकि और ऐसे बहुत सारे गीत सुनने के लिए ट्यून इन कीजिए रेडियो फजा 97.1 FM। डॉक्टर फरीद चौधरी इस वक्त सुन रहे हैं बहुत ही खामोशी के साथ, मसरूफियत के साथ, और शुक्रिया अदा करेंगे आपका। हमेशा आप प्रोग्राम को सुनते हैं और पंजाबी गीत की फरमाइश भी करते हैं।

और जी इतनी खामोशी से गीत खत्म हुआ, पता ही नहीं चला है ना। तो जितने लोग भी अभी सुन रहे हैं हमें, जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है, उन सबको खुशामदीद रेडियो फजा 97.1 FM से। हावर स्पेन से हमें सुन रहे हैं। एक बहुत ही प्यारी सी गजल आपने भेजी अपने दोस्तों के नाम, बहुत शुक्रिया हावर। बहुत दिनों के बाद आप शामिल हुए हमारे शाम के प्रोग्राम में, अक्सर हावर शामिल हुआ करते थे। और कुत्सिया आप सुन रही हैं, गीत आपको अच्छे लगे, प्रोग्राम आपको अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आप सबकी पसंदीदगी का, शामिल होने का। आप सुन रहे हैं हमें डर्बी से सुन रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया आपका भी। और आपने एक गीत की फरमाइश की जो कि ज़रूर पूरी की जाएगी, और फिर उसके बाद डॉक्टर फरीद चौधरी आपका पंजाबी का गीत आज के प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होगा। यकीनन 7 बजे तक आपका और मेरा साथ, और ज़िंदगी के ये खूबसूरत से पल जो कि पुराने नहीं होने चाहिए। मैं अक्सर कहा करती हूँ कि ज़िंदगी एक दिन पुरानी हो जाती है, लेकिन ज़िंदगी को पुराना होने के बावजूद जिंदा दिली के साथ जीने का सलीका सभी को आना चाहिए। वो बीते दिनों की बातें, वो गुजरे लम्हे, वो यादें यकीनन हम सब के साथ साथ रहेंगे हमेशा। उन्हें कभी हम अपने कंप्यूटर से डिलीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आने वाले लम्हे, आने वाले दिन, उन सब को भी हम सब ने भरपूर जीना है। आज का मौसम, आज का दिन यकीनन बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा, और ये दिन कल को पुराना हो जाएगा, यादगार हो जाएगा। समय बहुत सारे लोग लिबास पहनते हैं, खूबसूरत लिबास पहनते हैं, और लिबास हुस्ने मुआशरत है। जिन लोगों को लिबास पहनने का सलीका है, यकीनन उनकी शख्सियत अलग से पहचानी जाती है, और बहुत सारे लोग अपने लिबास से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। सो हर शख्स का लिबास पहनने का मुख्तलिफ तरीका है, उनके पसंद के रंग, उनके स्टाइल, उनके डिज़ाइन सभी के अपनी अपनी पसंद और अपनी अपनी शख्सियत के मुताबिक होते हैं। लेकिन कहा यह गया है कि लिबास हुस्ने मुआशरत है। जब हम मुआशरे के अंदर, सोसाइटी की जगह, किसी भी जगह पर जब हम जाते हैं, अपने लिबास से पहचाने जाते हैं। सो जी, लिबास को दिन भर के काम काज के बाद तब्दील करना क्यों जरूरी है? किसी शादी ब्याह में जाते हुए हमारा लिबास मुख्तलिफ होता है, किसी फ्यूनरल पर जाते हैं तो हमारा लिबास मुख्तलिफ होता है, किसी के घर जाते हैं तो मुख्तलिफ, किसी ऑफिस में जाते हैं मुख्तलिफ होता है, बाजारों में जाते हैं तो मुख्तलिफ होता है। और जब हमारा कुछ भी दिल नहीं कर रहा होता करने के लिए, हम चाहते हैं कि आज बिल्कुल रिलैक्स हों, तो उस वक्त हमारा लिबास मुख्तलिफ होता है। लेकिन मैंने बहुत जगहों पर देखा कि जब लोग नमाज वगैरह के लिए वज़ू वगैरह करते हैं, तो वो इस्त्री के बगैर कोई पुराना से लिबास पहन कर नमाज अदा करते हैं कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए। तो ये बात कई बार मैंने सोची, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा क्यों है? हम उस रब कायनात के सामने सजदा रेस होने लगते हैं जो दो जहानों का मालिक है, दो जहानों का बादशाह। उसके सामने तो हमें बेहतरीन इस्त्री वाला लिबास, अच्छी सी खुशबू लगा कर उसके दरबार में हाजिरी देनी चाहिए, लेकिन हम अपना इस्त्री के बगैर शिकनों वाला लिबास, पुराना सा, खुशबू के बगैर, जल्दी जल्दी से हम वजू करके उसके आगे सजदा देने लगते हैं। ये बात कभी कभी मेरे जहन में आती है, और आज मैंने आप सबके साथ इसको शेयर कर लिया। यकीनन आपको भी ज़रूर कहीं ना कहीं तो आपने भी सोचा होगा इस बारे में। सो जी, ऐसी बहुत सारी आती रहती हैं, और हम उन्हें कभी शेयर करते हैं, और कभी कहीं जहन में ही उसको गुमशुदा कर देते हैं। अगला गीत डॉक्टर फरीद चौधरी आपकी पसंद का पंजाबी का गीत है, और ये प्यारा सा गीत जो कि राहत फ़तेह अली खान साहब की आवाज़ में
जी हाँ, कंडे उत्ते मेहर मावे मैं ता कदों दी खड़ी। ये प्यारा सा गीत राहत वाले हाँ साहब की आवाज़ और जा रहा है डॉक्टर फरीद चौधरी आपके नाम।

राहत फ़तेह अली हाँ की आवाज़, पंजाबी का गीत, और ये गीत गया जी डॉक्टर फरीद चौधरी आपके नाम। बहुत शुक्रिया आप सबकी शिरकत का, और शामिल हुए आप सब लोग अपने मैसेजेस के ज़रिए, टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए, और शकील आप ही सुन रहे हैं हमें, बहुत शुक्रिया आपका। ट्यून इन किया आप सबने रेडियो फ़ज़ा को और हमें सुना। स्पेन से खावर ने एक बहुत प्यारी सी गज़ल दोस्तों के नाम की। उन्होंने कहा कि नॉटिंगम में मेरा बहुत सारा वक्त गुजरा और नॉटिंगम भी उन्हें बहुत याद है और नॉटिंगम में रहने वाले उनके दोस्त भी, लेकिन कहते हैं कि रिस्क की तलाश में मुझे स्पेन आना पड़ा और बहुत सालों से मैं स्पेन में हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं रेडियो फ़ज़ा को सुनता हूँ। तो ये प्यारा सा जो उन्होंने मैसेज दिया अपने दोस्तों के नाम, उनमें ख्याल साहब का नाम उन्होंने ख़ास तौर पर लिया। उन्होंने कहा कि जब यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं, जब यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं, मैं गुजरे

पल जो सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। जब यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं गुजरे पल जो सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। अब जाने कौन सी नगरी में आबाद हैं जाकर मुद्दतों से, अब जाने कौन सी नगरी में आबाद हैं जाकर मुद्दतों से। मैं रात गए तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। गुजरे पल जो सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं रात गए तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ लहजे खुशबू जैसे थे। कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ लहजे खुशबू जैसे थे। मैं शहरे चमन में टहलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं रात गए तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। वो पल भर की नाराजगियां और मान भी जाना पल भर में, अब खुद से जब भी रूठूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं गुजरे पल जो सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। अब जाने कौन सी नगरी में आबाद हैं जाकर मुद्दतों से। मैं रात गए तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं शहर चमन में टहलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। अब खुद से जब भी रूठूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। और उन्होंने अपने तमाम दोस्तों के नाम किया इस प्यारी सी गजल को। जी हाँ, रेडियो फजा। जी हाँ, आप सुन रहे हैं। और कुछ भी कहना चाहें, कुछ भी सुनना चाहें तो जरूर शामिल हुआ करें अपने दोस्तों के लिए, अपने प्यारों के लिए, जिनकी आप इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं।

सामने गीत वीर जारा से लिया गया है, शाहरुख खान और प्रीता सेंता, जी हाँ उनके नाम, जावेद अख्तर की शायरी। आया तेरे दर पे दीवाना। और वीर जारा फिल्म एक बहुत ही क्लासिकल, बहुत ही प्यारी सी फिल्म थी। कई बार देखने के बाद भी उस फिल्म को देखा

और जी वीर सारा का ये गीत आया तेरे दर पे दीवाना, प्यारा सा क्लासिकल गीत और बहुत ही उम्दा खूबसूरत सी फिल्म थी, एक प्यारी सी स्टोरी जो कि हमेशा याद रहेगी। ऐसी बहुत सारी फिल्में जो कि स्टोरी थी उनके अंदर, उनके गीत थे, उनकी शायरी थी, जो कि मुद्दतों याद भी रहेंगी और हम सब की लिस्टों में भी शामिल रहेंगी। आप क्या कहना चाहेंगे? ज़रूर कहते ना कि बोल के लब आसाद हैं तेरे, कुछ आप कहें और कुछ हम कहें और फिर दो घंटे गुजरने का एहसास भी नहीं होता। ज़िंदगी यूँ समझिए कि पुरानी नहीं होती बल्कि यादगार बन जाती है। और मैं तो क्या कहते हैं कि स्टेशन पर जब भी आती हूँ, मुझे पता होता है कि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, कुछ शामिल होते हैं, कुछ खामोशी से सुनते हैं। आवाज़ों का रिश्ता है बहुत ही मजबूत और बहुत सालों से चल रहा है। सो जी, बहुत सारे लोगों ने शिरकत की, अपने टेक्स्ट मैसेजेस भेजे, सो उन तमाम का शुक्रिया। और जिन्होंने खामोशी से सुना आज के मौसम को एंजॉय करते हुए, उन सब का भी शुक्रिया। लेकिन किसी भी सोच में डूबे हैं, काम की तंगी है, काम बहुत ज़्यादा है, काम नहीं मिल रहा, ज़िंदगी का पहिया आगे नहीं चल रहा, तो परेशान मत हों, उस पहिए को उतार के साइड पे रखें, कोई नया पहिया उस गाड़ी के साथ जोड़ के फिर ट्राई करें, गाड़ी ज़रूर मूव होगी। ये कैसे हो सकता है कि गाड़ी, ज़िंदगी की गाड़ी एक ही जगह पर रुक जाए? कहते हैं कि हरकत में बरकत है, सो हरकत करते रहा कर बरकत खुद ही आ जाएगी। सो जी, ये सब कुछ कहने के लिए 97.1 FM और स्टूडियो का नंबर 01157100097 पर मिसेस चौहान आपका मैसेज मिला जी, बहुत शुक्रिया, आप इतने दिनों के बाद आपका मैसेज आया। कुछ मसरूफ़ हैं और कहीं बाहर हैं, इस वजह से शामिल नहीं हो पा रही। सब नाटी गम वालों को आपने याद किया और आपने कहा कि मैं ज़रूर बहुत जल्द शिरकत करूँगी। तो जी, हम ज़रूर आपकी वापसी का इंतज़ार करेंगे और क्या कहेंगे, और बहुत कुछ कहना है। सो इस गीत के बाद एक बार फिर से काजल और शाहरुख खान

जी, वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है और वक्त को हमने कैद करना है मुट्ठी में, है ना। अपनी यादों में, अपनी मुट्ठी में इस वक्त को कैद करना है, वक्त को इस तरह से ज़ाया नहीं होने देना है ना, क्योंकि वक्त की बड़ी कदर है हमारे पास, बड़ी कीमत है इस वक्त की। ये वक्त एक दफ़ा हाथों से निकल जाए तो फिर वापस नहीं आता। सो हमारा दिल चाहता है कि हर लम्हा, हर घड़ी, हर पल को कैद कर लिया जाए जो इस हमारे पास, जब बस यही वक्त हमारा है। आने वाले वक्त का तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। सो जो मुयस्सर है उसको कैश करना चाहिए, और जो मुयस्सर नहीं उसके बारे में अच्छा सोचना चाहिए, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। मेरा रब ही है। अली आपका शुक्रिया, स्पेन से हावर आप थे, कुदसिया आपका, इखलाक साहब आपका, फरवा और उसके बाद दिल गलती कर बैठा है, बोल कुपारा क्या होगा जी, इस गीत की भी फरमाइश आई है। सो ये गीत यकीनन आपकी समातों तक पहुंचेगा रेडियो फसा की वजह से। सेठी साहब आपका शुक्रिया, बहुत सालों के बाद आपने दोबारा से शिरकत की, और आपका आना, हावर का आना, सभी का आना बहुत अच्छा लगा और जिंदगी मजीद खूबसूरत हुई, और ये प्रोग्राम जी हाँ मजीद खूबसूरत हुआ। हमारे बाद आएंगे उमर, जी हाँ उमर अपना पहाड़ी शो, मीरपुर शो करेंगे। लेकिन बहुत सारे गीत और उमर की बहुत सारी प्यारी प्यारी सी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, और अगले हफ्ते से एक नया शो शुरू हो रहा है जो कि हमारे शो से पहले होगा। नए प्रेजेंटर हैं और नई शमा जलाएंगे, नई बातें करेंगे, यकीनन आपको अच्छा लगेगा। सो स्टे ट्यून इन रेडियो फजा 97.1 FM।

और जी जो अगले हफ्ते 3 से 5 बजे शो होगा वो होगा जी पोठारी बैठक, हमारे प्रोग्राम से पहले होगा, फिर हमारा प्रोग्राम और उसके बाद उमर आपका प्रोग्राम होगा। और उमर भी यकीनन स्टूडियो तक पहुंचने की तैयारी में होंगे, कहीं रास्ते में भाग दौड़ कर रहे होंगे। वो कहते ना, मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में एक मोड़ आया और मैं जल्दी से क्या छोड़ आया अपना स्क्रिप्ट। कहीं पर अगर उमर आप सुन रहे हो तो यकीनन अपना स्क्रिप्ट इधर उधर ढूंढ लीजिए, ये ना हो कि आप जब स्टूडियो में आए और स्क्रिप्ट कहीं रास्ते में भूल आए और फिर प्रोग्राम, जी हाँ प्रोग्राम क्या हो जाए, खूबसूरत हो जाएगा ज्यादा। पोठारी बैठक, जी हाँ ये प्रोग्राम आप नेक्स्ट वीक सुन पाएंगे मेरे प्रोग्राम से पहले 3 से 5 बजे। और ये करने वाले जी, इनका नाम है बासित अली, जी हाँ हमारे प्रेजेंटर हैं बासित अली, वो पोठारी बैठक के साथ आएंगे।

और जी हमारे जाने का वक्त हुआ क्योंकि अगला प्रोग्राम उमर वो पेश करेंगे। सो जी जाने से पहले क्या कहेंगे आज का प्रोग्राम और आज के प्रोग्राम की तमाम बातें? यकीनन हमारी यादों में महफूज रहेंगी और अगले हफ्ते इंशाल्लाह नए टॉपिक नई बातों के साथ फिर आप सबके साथ होंगी। सो FM 97 पर जब हमारी आवाज़ आती है तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। शकील आपने फरमाइश की लेकिन वक्त की कमी की वजह से इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपकी फरमाइश को ज़रूर शामिल करेंगे। और बहुत सारी बातें करनी थी और बातें तो हमेशा हम तसल्ली ही से करते हैं। और इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी इसी तरह तसल्ली से बातें होंगी। सो आपने जो कुछ कहना होगा उसको ज़रूर शामिल किया करें। आज का प्रोग्राम, आज का खूबसूरत सा दिन और आज की तमाम चीज़ें यकीनन हमारी यादों में महफूज रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए अपने साथ जुड़े हुए रिश्तों का। और आज का मौसम और ये आने वाले हफ्ते में यकीनन मौसम थोड़ा सा बदल जाएगा, लेकिन लो जो लम्हात जो घड़ियां जो पल आपको मिले हैं उनको भरपूर तरीके से जिए, क्योंकि आज हमारे हाथ में है, ये लम्हे हमारे हाथ में हैं, ये घड़ियां हमारे हाथ में हैं। कल को किसने देखा, हम में से किसी को भी पता नहीं। सो ढेर सारी मोहब्बतों के साथ, ढेर सारी दुआओं के साथ आप सबको छोड़े जाती हूँ इस उम्मीद पर कि अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।

0: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
1: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
0: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
1: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
0: डिलिशियस प्रीमियम स्टेक, जूसी बर्गर्स, क्रीमी पास्तास और फ्रेश ड्रिंक्स, सब कुछ एक ही जगह।
1: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
0: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
1: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
0: टेस्ट भी, वाइब भी। हेलो, कहाँ पर हैं आप?
2: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
0: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
2: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
0: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
2: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
3: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
0: Park Foods, जो नाम है मायार का।
4: Ready to move.
5: It's all about the beats.
6: Wow, FM. Only tune Super Hit Channel.
7: Fizz on 97.1 FM.

जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। जी तुसा की खिदमत, तुसा ना भरा, तुसा ना दोस्त, तुसा ना कालीक, उमर जंजुआ रंगे कश्मीर प्रोग्राम लैके तुसा की खिदमत हाजिर हो गया जी। बिल्कुल असं ये प्रवास जड़ी है कश्मीर प्रवास, इसना टाइम थोड़ा रह गया और ये उड़ान भरने वाली है। तो जितने भी माड़े भैन भ्रा, माए दोस्त, माए कॉलीग्स, माए फ्रेंड्स, माए ऑल द लिसनरशिप ऑफ रेडियो फिजा, जिथे जिथे तक साड़ी आवाज़ जा रही है, तुसा सारे खुश आमदीद और प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम।

जी तो तुसा दी खिदमत दी पेश है जी रंगे कश्मीर, रंगे कश्मीर यू नो व्हाट द डे इज, अज तुसा ही पता अज क्या दिन है, अज दिन है जी मंगल दा दिन है, 7:03 होए, 5 अगस्त 2026, 3 minutes past 7 एंड इज 25th of August 2026 एंड इज वन एंड ओनली द डे यू नो, तुसा सारें पता क्या दिहाड़ा, ओनली ट्यूजडे।

तुस इस परिवार का हिस्सा बनो और अपने हफाजती बैल्ट जो बनी गिनो और एक परिवार दौरान बनने वाली है और जितने भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं फॉलो करो जी, बिल्कुल साढ़े नाल रहो, साढ़े नाल जुड़े रहो। माड़े तो पहले बहुत ही अच्छा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है जी, फाखरा आप ही तरफों माशाल्लाह क्या बात है उन्होंने, और हमेशा ऑलवेज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम पेश करने न, और अल्लाह उन्हें जिंदगी दिया है। एंड ऑलवेज मैं रस्ते चशनी उन्होंने प्रोग्राम सुनना सा और मजा आशना है। जड़ी उन्हें गल माड़े हवाले की है, माड़े बारे की है, उस ना मैं उन्होंने बहुत शुक्रिया गुजार हाँ। ये आला शख्सियात ही एक दूसरे प्रेजेंटर ने बारे इतनी तारीफ करनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फाखरा अबी, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। तुसा सुनी रहो रंगे कश्मीर, जियो कश्मीरी हो।

उम्मीद करना जितने भी प्रोग्राम असा इस रेडियो चैनल की तरफ पेश किए जाने तुसा सारियां की सुनने भी उसे और लुत्फानंदोज भी होने उसे और मजा भी इशना उसी और जितने भी प्रोग्राम पेश किए जाने तुसा वास्ते साड़ी कम्युनिटी वास्ते किए जाने 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year बिल्कुल जी 24 घंटे 7 दिहाड़े त्रै पूरा साल थ्रू आउट असा तुसा वास्ते डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम आने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कवर किए जाने उम्मीद करना तुसें इसी अप्रीशिएट भी करने उसो और मैं सुनने भी उसो सारे प्रोग्राम की और जितने भी प्रोग्राम असा ने जितने भी प्रेजेंटर पेश करने चाहे वह दिहाड़ी है चाहे शामी है चाहे सुबह है चाहे लेट नाइट है ऑलवेज सुनिया करो अप्रीशिएट करया करो और कोशिश करया करो असा की फीडबैक जाना कोई भी प्रोग्राम के हवाले तुसा की कोई कमी पेशी लगनी है ऑलवेज डू कम एंड जॉइन अस लाइव कॉल करो स्टूडियो नंबर 01157100971 अगर तुसा व्हाट्सएप मैसेज करना चाहते व्हाट्सएप का नंबर भी सेम है ऑल यू हैव टू डू जस्ट ऐड +44 77 +44 115 71 9 71 उत्थें तुसा व्हाट्सएप पर मैसेज करी सकने हो जोड़ा भी तुसा पैगाम है मैसेज है कोई भी तुसा रिक्वेस्ट है तुसा सारा कुछ तुसा असा की उत्थें आखी सकने हो

साढ़ा तुसा साथ रहा जी। 7 to 9 साढ़ा प्रोग्राम का टाइम होना, 7 to 9 दो घंटे ने सैगमेंट होना और इसने विच कमर्शियल ब्रेक्स होनी है। कमर्शियल ब्रेक वैसे ऑब्वियसली बहुत जरूरी होनी है। जितने भी साढ़े भैन भ्रा जितने भी बिजनेस कम्यूनिटी आ दे ऑल द पीपल आ दे जिहड़े जिथे तक माड़ी आवाज़ जा रही है, तुसा सारिआं की ये रिक्वेस्ट करने हैं तुसा अपना लोकल रेडियो स्टेशन है इसे सपोर्ट करो और ऑलवेज अपने कोशिश करें कि जितने भी टेक वेज रेस्टोरेंट्स बिजनेस लाइक वट एवर टाइप ऑफ बिजनेस दैट यू हैव always do come and advertise on your local radio station. As we, alhamdulillah, we have a huge listenership. Jitni badi saari listenership hai aur dusran ke isne to fayda hi usi nuksan ka dev nahi hona. So keep listening to Radio Faza 97.1 FM. Apne radio station ki tusan khud support karni hai aur isne hawale na anything that you and also would like to request tusan agar join karna chahunde ho asan ki by all means come and see us and we will train you to proper professionally. You'll be trained. Sahi dusran ki training deti jasi har tarike ne training deti jasi aur kisi cheez ni kami peshi nahi rehne lagi. Asan ne bahut sare pehna pra join karna chahne but they are be hesitant thode chakne chakona chakne ni koi zarurat nahi tusan ki bilkul hai tusan apna radio station hai har tarah ni tusan ki itthe training deti jasi and you can be part of our brilliant beautiful team.

जी, तो अगर तुसा कोई ट्रैक सुना, कोई क्वाली सुनी है, कोई भी तुसा चीज सुनी है, जस्ट कम कॉल मी लाइव इन द स्टूडियो. द नंबर इज 0157100971. यू कैन आल्सो सेंड अस अ मैसेज, एंड फॉर द मैसेज इज +44 115 71971. तुसा ने खिदमत ही पेश किया जा रहा जी, रंगे कश्मीर वन एंड ओनली रेडियो फजा 97.1 FM/DAB Radio इन स्टूडियो. तो सन अपना भरा, अपना दोस्त, अपना वीर, अपना कलीग उमर जंजूआ तो नाल है.

जी मुंडे कश्मीर दे, मुंडे कश्मीर दे तुसा ट्रैक सुनी जो सी, जो उम्मीद करने आ तुसा कि पसंद आया हो सी, तुसा सुनी जी ओ रंगे कश्मीर। ते वाइल द सॉन्ग वाज प्लेइंग कि असा ने भाई कॉल कीती एंड दे रंग मी एंड दे सेड ब्रदर ब्यूटीफुल प्रोग्राम, कैरी ऑन, कीप डूइंग इट, आई एम रियली एंजॉयिंग इट एंड आई एम ड्राइविंग, आई वाज जस्ट गोन ऑन शॉपिंग, टर्नड ऑन एंड आई न्यू इट वाज ट्यूसडे, आई ऑलवेज लिसन टू यू, always listen to your shows and I always keep an eye out for your statuses as well. Thank you bhaiyan, thank you, bahut shukriya, bahut meharbani, eh tusani mohabbat hai, tusana pyar hai. Tusani mohabbat pyar jehda tusan koshish kare ko asan ki call karne ho live call karo, don't talk, tusan usla call karne jela the song was playing, do call me live. बिल्कुल चकया ना करो, बिकॉज आई ऑलवेज वेट फॉर योर शो एवरी ट्यूजडे, आई मेक श्योर दैट 7 o'clock आई बी फ्री, सो आई डू नॉट मिस आउट ऑन रंगे कश्मीर। आई एम अ कश्मीरी सन एंड आई एम अ प्राउड टू बी कश्मीरी एंड आई वॉन्ट टू जस्ट से दिस, बीइंग अ कश्मीरी, अल्लाह हैज ब्लेस्ड अस विद सो मेनी थिंग्स and I really was looking forward to something like that coming, a show, radio show, which would be named on our part of land, which is Kashmir. And I would like to say a big thank you to you and to all your team. Thank you so much, brother. This is why we do it. Is sab so asan janab ali is program na nahi jada range kashmir rakhe hai, isne piche aur koi wajah nahi, असं चाहने जितनी भी साड़ी कम्युनिटी है, साउथ एशियन कम्युनिटी, तुस किसे मुल्क ने हो, किसे खिते ने हो, जेड़े भी पार्ट नाल तुसा बिलोंग करने हो, असं तुसा ने नाल मुहब्बत करने और असं चाहने कि तुसा ने मुहब्बत ना रिश्ता, प्यार ना रिश्ता साड़ी रेडियो नाल ऑलवेज जुड़िया रहे। My brother said, can you please play me a track which is called Kamali? I dedicate this to my wife and she loves this song and I love her more than this song. Oh, that is so nice. And please play this track for my wife and we are both listening to you and thank you for naming your show Rangi Kashmir, and honestly I am so thankful to you from bottom of my heart. Thank you very much bhaijan, bahut shukriya, bahut meharbani, tusa aisa ki message kita, call kiti hai, aisa ki message bhi kita hai, call bhi kiti hai, and you said college ina call kiti hai, main to message karsa college mein, tiyan gallan na kar sakna, while I'm typing I'm really good at it and I've seen that you are good at it, there's no doubt. Chalo ji, keep listening ready for 97.1 FM/Dab Radio, tusan apna show, apna radio host Umar Janjua, tusan khidmat ich hazir hai Range Kashmir nal.

0: ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਸ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਐਂਡ ਦ ਸ਼ੋਜ਼ ਐਂਡ ਫੋਰ ਦ ਰੇਡੀਓ ਐਂਡ ਫੋਰ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ ਨੌਟਿੰਗਹਮ. ਮੇਰੀ ਮੈਸੇਜਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮਾੜੇ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਬੜਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਤੁਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ. ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਦ ਬ੍ਰਦਰ ਜਸਟ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਮੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬ੍ਰਦਰ ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਪਲੇਡ ਦਿਸ ਟ੍ਰੈਕ ਲਾਸਟ ਵੀਕ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਟ੍ਰੈਕ ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਲੀ ਵੁੱਡ ਆਈ ਲਵ ਦਿਸ ਟ੍ਰੈਕ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਅਗੇਨ. ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਨਾਟ ਸੇ ਨੋ, ਪਲੇ ਦਿਸ ਟ੍ਰੈਕ ਫੋਰ ਮੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਐਂਡ ਟੂ ਆਲ ਮਾਈ ਕਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰਸ ਐਂਡ ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਡੀ ਐਂਡ ਆਲ ਟੂ ਲਿਸਨਰਸ ਆਫ ਦ ਰੇਡੀਓ ਫਿਜ਼ਾ 97.1 FM. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ. ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਬਾਈ ਇਟਸ ਅ ਮਿਕਸ ਸੌਂਗ ਬਾਈ ਨੂਰ ਜਹਾਂ, ਬੋਹੀਮੀਆਂ ਐਂਡ ਸਿੱਧੂ. Please play me that track and I really love this track. And I think it's an amazing track and you're doing a beautiful program. Carry on, and I'm listening to you every Tuesday. And if I forget, my wife always reminds me, today's Range Kashmir Day. Oh, thank you so much. We're going to go to our commercial break and we'll see you right there after the commercial break. Stay there. Good evening, John. I take it away. Keep listening to Radio Fizzar 97.1 FM.
1: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए.
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में A stars और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं.
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है.
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता.
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है.
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ.
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231. कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा.
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: Hits.
7: Music never sounded better.
8: Fizzan 97.1 FM.
7: I love it.
9: You are listening 97.1 FM.
0: ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਣੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ. ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਰੇਡੀਓ ਫਿਜ਼ਾ 97.1 FM. तुसें अपना शो, तुसें अपना रेडियो होस्ट विद रंग कश्मीर, तुसें अपना भाई उमर जंजुआ ये प्रोग्राम लैके तुसें खिदमत हाजिर है। जी असों को रही गया तकरीबन जी 55 मिनट्स वी हैव लेफ्ट विद यू गाइस। ये बिल्कुल तुसा सही सुनी रहे हो साढ़ा और तुसा ना साथ जो 55 मिनट रही गया अज ने दिन ने हवाले नाल रेडियो ने शो ने हवाले नाल जिंदगी दी गल नहीं की थी। वेलकम बैक आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक। जी उम्मीद करने तुसा सारे साढ़े नाल ही हो सो एंड वी गॉट अ फ्यू लिस्ट टू प्ले एंड But the request for this song, he goes, I know you played it last week, but please, please, please do not refuse to play again, as I really love this track and I want you to dedicate this to my wife especially, to my brothers, to my cousins, to my friends, to everybody, and to all your listenership. Bilkul ji, we're going to play this track and I hope you enjoy it. And agar tusan sa ki honi tune in kita, honi join kita, tusan suni radio, Radio Fizzar 97.1 FM /Dab Radio, Rangay Kashmir, प्रोग्राम पेश किया जा रहा इस रेडियो ने स्टूडियो तू और तुसा सारे भैन भ्रावास है जियो कश्मीरी हो जीने रहो। Here we are, my brother, the track is on its way and I hope you enjoy and we specially dedicate this to all the people and specially to your wife.

में तेरे इश्क में वाला बीफ ट्रैक बाय लता मंगेशकर नाई घना और रीमिक्स होया बाय बोहिमिया।

जी ते तुसां सुनी जो जी रंगे कश्मीर, रंगे कश्मीर पेश कीता जाईदा तुसां दी खिदमत जी, ओ तुसां दी अपनी मां बोली विच अपनी सोहणी जी मिठी जी जबान विच। साला तुसां दा साथ अज ने शोरे हवाले नाल ऑब्वियसली वी हैव टू आवर सैगमेंट, साढ़े दो सैगमेंट होने, फर्स्ट आवर एंड द सेकंड आवर, टू आवर सैगमेंट्स। टाइम यकीन करो इस तरह स्पीड नाल लंघना है ना कि तुम सोच ही ना सकने, बहुत जल्दी जाना है टाइम। नाउ वी गॉट अनदर ट्रैक टू प्ले, इट्स अ रिक्वेस्ट बाय ब्रदर, ही गोज़ ब्रदर कैन यू प्लीज प्ले मी अ ट्रैक सुबह से लेकर, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक, ही गोज़ इट्स अ रीमिक्स, आई एम नॉट श्योर विच बाय विच पार्टी इट इज, बट इट्स अ रीमिक्स दैट आई वुड लाइक टू लिसन टू द न्यू वर्जन ऑफ इट, एंड आई एम लिसनिंग टू योर शो, इट्स गोइंग ब्यूटीफुल, कैरी ऑन ब्रदर, एंड वी लव द टाइटल ऑफ योर शो रंगे कश्मीर, एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग सच अ प्रोग्राम in into your radio's programming list. We appreciate it because I listen to your radio station all the time and I think it's beautiful. Jitne all the programs, jitne bhi program pesh kiye jate hain, they are very beautiful. Brother, you wrote some Urdu there as well, mashallah, that's good. Jitne bhi program pesh kiye jate hain, they are beautiful, and I always make sure I give my feedback, and I am a bit shy boy, I do not go live in the studio, but I always send the messages out, and please play me this track and dedicate this to somebody who is really close to my heart, mashallah, that's good. We're going to dedicate this track to somebody as well who is close to our heart as well. Don't worry, brother. And they are listening to our show right now. Oh, sorry, radio ki, sorry, is program ki sunne pe unhon ki pata. ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯੂ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸੁਣੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਲਵੇਜ਼। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਵਟ ਇਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਪਾਈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਮੀ ਲਾਈਵ ਇਨ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 0115-7109-71, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਰਹੀ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਅਦ 33 ਮਿੰਟਸ। Right, we're not going to waste any more time. We're going to go straight to the track and keep listening to Radio Fizzar 97.1 FM / Tab Radio. I've got this track lined up for you, brother, and also I'm going to dedicate this song to somebody who's very close to our hearts as well, and we hope they will enjoy this track. Samjhe the ke also.

ब्यूटीफुल ट्रैक है यू गाइस आर लिसनिंग टू सुबह से लेकर शाम तक इधर इसने बीच बीच सारी कमर्शियल ब्रेक भी नंगी की कोई मसला नहीं नो प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम व्हाट इज वी ओनली गॉट अबाउट 20 odd minutes लेफ्ट विद यू गाइस वी आर गोना ट्राई एंड प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग एंड आई होप Brother, you loved this track and you enjoyed it, and I dedicated this especially to you, obviously, to all the people that you said. Now we're going to go to this track. It's called Chand Sifarish.

We just got enough time to play one more track, and I hope you guys will tune in next week. Or अगर कोई गलती गुस्ताखी हुई तो माज़रत, उसने बस शायद उम्मीद करनी है तो सा की फीडबैक दे सो साढ़े प्रोग्राम ने हवाले नाल. एंड इफ यू वुड लाइक टू स्पॉन्सर माय शो द रंगे कश्मीर, बाय ऑल मींस ऑल द बिजनेस कम्युनिटी आउट देयर, यू आर मोर देन वेलकम टू स्पॉन्सर माय शो. ए तुसा ने नाम तू बकायदा ए तू डेडिकेट किया जासी टू होल्ड द कम्युनिटी, होल्ड द लिसनरशिप एंड एवरीबॉडी एल्स.

0: क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशन भी कर देने।
1: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
0: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
1: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
0: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
2: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन्न,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम NG72ET
3: Peshawri Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्ड

0: नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिसनिंग टू रेडियो फाजा ऑन 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: You are listening to 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए।

किसे किसे पुकारिए, किसे किसे पुकारिए, जवानी आये मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।

0: मैं हूँ।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: Attention!
4: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
5: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
6: भाई मुबारक तो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
5: लासा ट्यूशन सेंटर?
6: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
5: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
6: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
5: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
7: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
8: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
9: सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1 FM।
10: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station. That plays.
2: Foot tapping music.
3: Huzza 97.1 FM.
4: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 077-021-0792।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8, 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bayesford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.